गुर शब्द जलाए निर्मल नाम तल हृदय ध्याए तारत राखे ठाक रहाए सिख संगत कर्म मिलाए गुर बिन पूलो आवे जाए नदर करे संजोग मिलाए रूड़ो कहो न कहे आ जाई अकथ कहो न कीमत पाई सब दुख तेरे सूख रजाई सब दुख मिटे सच नाई कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझे ता सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखे रखवाला तिर पवन सूजे आप गुवावे पानी बूझे सच सुमावे शब्द विचारे एक लिवतारा नानक तन सुवारण हारा आसा मोहल्ला पहला लेख असंख लेख लेख मान मन माने सच सुरत वकान कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार लेख असंख अलेख अपार ऐसा साचा तू एको जान जमन मरण हूं पछाण रहाओ माया मोह जग बादा जमकाल बंदा छूटे नाम समाल गुरसुख दाता अवर न पाल हलत पलत निर्गी तुद नाल सद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता परम चुकाए जीवन मुक्त मन नाम साए गुरमुख होए ता सच सुमाए जिन तर साजी गगन आकाश जिन सब तापी ताप उताप सर्ब निरंतर आपे आप किसे ना पूछे बगसे आप तू पुर सागर मानक हीर तू निर्मल सज गुणी गहीर सुख मन भेटे गुरपीर एको साहेब एक वजीर जग बंदी मुगते हो मारी जग ज्ञानी विरला आचारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर भेटे सा फिरे अंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोय जग रोगी भोगी गुण रोए जब उपजे बिन से पल खोए गुरमुख होवे बूझे सोए महंगो मोल पार अपार अटल अछल गुरमती तार पाए मिले पावे पैकार नानक नीच कहे विचार आसा महला पहला एक मरे पंचे मिल रोवे हौ में जाए शब्द मल तोवे समझ सूझ सहज कर होवे बिन बूझे सगली पद खोवे कौन मरे कौन रोवे ओही करण कारण सबसे सिर तोही रहाओ मुए कौ रोवे दुख कोए सो रोवे जिस बेदन खोए जिस बीती जाने प्रस होए आपे करता करे सुहोए जीवित मरना तारे तरना जय जगदीश परमगल सरना होमले हारी सदगुर चरणा गुर बोहेत शब्द पै तरना निरप आप निरंतर जोत बिन नावे सूतक जग शोत दुर्मद बिन से क्या कहे रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रैगुण रोवे नीता नीत दुख सुख परहार सह सोचीत तन मन संपव कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म तर्म बहु संख असंख बिन पै भक्ति जन्म बिरंत हर गुण गावे मिल परमारंत आप मरे मारे पी आप उपाए था प्योताप सिठ उपाई ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सब गीताए नानक सूतक जन्म मरीज गुर प्रसादी हरस पीज राग आसा महला पहला आ विचारे सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर माने मन ते मन तीरा ऐसा साओ सरा पी कर सची नगर एक लिवतर रहाओ पूंजी नाम निरंजन सार निर्मल साज रता पैकार सिवत सहज कर गुर करतार आसा मनसा सब जलाए राम नारायण कहे कहाए गुर ते वाट महल कर पाए कंचन काया जोत अनूप तिर पवन देवा सगल स्वरूप मैं सो तन पल्ले साच अखूट पंच तीन नव चार समावे तरण गगन तल तार रगावे
बार जातो उल्ट परावे। मूर्ख होए न आखी सूजे, जे वारस नहीं कहया बूझे। पिता माता जग से लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे। गुण को तावे अवगुण तोवे, बिन गुर सेवे सहजन होवे। हीरा नाम जवे हरलाल, मन मोती है तुसका माल। नानक परखे नदर निहाल, आसा महला पहला। गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान, गुरमुख महली महल पछाण। गुरमुख सुरत शब्द निशान, ऐसे प्रेम भगत विचारी। गुरमुख सचा नाम मुरारी, अरहाओ आए निस निर्मल थान सुथान। तीन पवन ने केवल ज्ञान, साचे गुरते हुकुम पछाण। साचा हरख नाई ते सोग, अमृत ज्ञान महारस भोग। पंच सुमाई सुखी सवलोक, सगली जोत तेरा सब कोई। आपे जोड़ बिछोड़े सोई, आपे करता करे सोई। ताए उसारे हुक्म समावे, हुक्मो वरते जोत पावे। गुर बिन पूरा कोई न पावे, बालक गिरद न सुरत प्राण। पर जो बिन बूढ़े अब महान, बिन नावे क्या लहस निदान। इसका अन तन सहज न जाना, परम पुलाना फिर पछताना। गल पागी बौरा बौराना, बूढ़ जग देखिया तो डर पागे। सतगुर राखे से वड़ पागे।

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीर लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम स्या सुखदाता अनदन बाणी नामे राता मेरा प्रलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथे सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दुख काटे हर नाम प्रगास कर विचार आचार पराता सदगुरु बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल सागत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना ए तुत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लहे कर आपे बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो होमे कौरा रहाओ यो मन मुगध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बगसे सदगुर मेले काल कंटक मारे सज पेले यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तद ते जन्मा सागत लोभी ओ मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख तेरे पमन सोजी होई यो मन जोगी भोगी तब तप गुरमुख तीने हर प्रवे आपे मन बैरागी होमे त्यागी कड़ कड़ मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दर कर मैलनी हर पत राखे यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरप गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए होमे ग्रास एक दिथाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनघ सुन मान्या शब्द विचारी आत्मा चीन पय निरंकारी यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहे निस हर जस गुर प्रसाद कड़ कड़ सो प्रभ आ जुगात राम रसायन यो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा महला पहला तन बिन से तन का को कहिए बिन गुर राम नाम कत लईए राम नाम तन संग सगाई आयरस निर्मल हर लिवलाई राम नाम इन कमन हमारा सुख दुसम कर नाम न छोड़ो आपे बगस मिला मनहारा अरहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम सारा जिस तू बगसे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरदाता राम गोपाला क्यों पावे त्यों राख दयाला गुरमुख राम मेरे मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रगाया आवर न औखद तंत न मंता हर घर सिमरन केल वखंता तू आप भुलावे नाम सार तू आपे रखे कृपा तार रोग परम पेद मन दूजा गुर बिन परम जपे जप दूजा आदि पुरख गुर दर्शना देखे बिन गुर शब्दे जन्म के लेखे देख अचरज रहे विस्माद कट कट सुर नर सह समाध परपुर तार रहे मन माही तुम संसर अबर को नाही जा की भगत हेत मुख नाम संत भगत की संगत राम बंधन तोरे सहज त्यान छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान ना जमदूत दूत लागे जो जन राम नाम लिव जागे भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਤੁਕੀ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਣੇ ਦੁਖ ਮਿਟੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ ਆਰਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈ ਨੀ ਤਦ ਗੁਰ ਸੇਵ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਣੈ ਨੀ ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ ਸੁਧ

तनी साचा मुख नाम रखाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे हृद सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरे साचे गुर बुद्ध। जोगी पोगी कापड़ी क्या पवे दिसंतर, गुर का शब्द ना चीनी तद सार निरंतर। पंडित पांदे जो इसी निद पड़े पुराना, अंतरवस्त ना जाननी घट ब्रह्म लुकाना। एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा, आप ना जीने तामसी काहे पए उदासा। एक बिंद जिदन कर राख दे से जति कहावे, बिन गुर शब्द ना छूटगी प्रमे आवे जावे। एक गिरगी सेवक सदका गुरमती लागे, नाम दान इस नाम गिरड़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए जो जाए सियाने, नानक नाम ना विसर ऐसा ते मन माने। आसा महला पहला मनसा मने समायले।

एक गर्भ बन जाइए। मन मुखिया सिर मार वाधक पाइए, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए। साहिब हृदय बसाए न पछोताव ही, गुण गा बख्सनहार शब्द कुमाव ही। नानक मंगे सच गुरमुख खालिए, मैं तुझ बिन अवर न कोए नदर निहालिए। आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जय देखा तै सोए अवर न जानिए। गुर की कार कुमाए मैल पछाणिए, रहाओ आ मिलावे सच ता मन पावई। चले सदार जाए अंक समावई, सच्चा साहिब मन वसे वसिया मन सोई। आपे दे वड्याईया दे तोट न होई,

नाम अमोलह तू उत्तम हो नीत सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई सदगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई अरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाये आद पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए नडुए सांग बनाया बाजी संसारा खेन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा होमे चौपड़ खेलना झूठे अंकारा सब जग हारे सो जने गुर शब्द विचारा जो अंधले हथ टोनी हर नाम हमारे राम नाम हर टेक है निद दौत सवारे ज्यो तू राखे त्यो रहा हर नाम अधारा अंत सखाई पाया जन्म मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटे जप नाम मुरारे नानक नाम ना विसरे पूरा गुर तारे आसा महला तीजा अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

आस तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुगमना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब सच्चा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना फैदे नाम सुमाणी आसा महला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाए गे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अगन तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोय न जानी माया होए दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तब सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिर पवन सोजी होए आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साध दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

अष्टपदियां तार अठवां काफी गुर ते साख उपजे जिन तिसना अगन बुझाई गुर ते नाम पाईए वड्डी वड्याई एको नाम चेत मेरे पाई जगत जलंदा देख के पर पै शरणाई।

मानुख मर मर जम में पी मर जम दर होए खुवार आ मिलायन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाने मुख उजले तिल सच्चे दरबार आसा महला पंजवा अष्टपदियां कर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गवाए इन बिद नगर उठा मेरे भाई दुर्त गया गुर ज्ञान।

दांत सहित सुखे सब हाट सा व्यापारी एक थाट जेजिया डन को लय न जगात सगुर कर दीनी तुरकी शाप वखर नाम लड़खेब चलावो लैलाह गुरम कर आव सदगुर साहो सिख बन जारे पूंजी नाम लेखा साज सुमारे सो वस्ते इत कर

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास कणी चितवत अनग प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नाम है रंग जेते माया रंग रस बिन सजाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जय चलतो पेकिए नेचल घर को नाओ कर्म तराई सास्यो नेचल पा बैठाओ मीत साजन सुत बंद प को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पए लग सागर तरयो ते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेह सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु पावे सो फला तेरे पाने कार्ज रास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्राभ पेटे परमानंद आसा मोहल्ला पंजवा बिरघड़े तार चौथा चंता की जात एक ओंकार सदगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रसिमरिये प्यारे दर्शन को बल जाओ जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए क्यों तन वेती संत पह प्यारे प्रीतम दे मिलाए तुलसी गार बिखिया के भी।

दिया सब नी लिया, तर्मी कर्मी हूं पया, नन्ने ना पूनित पुगे, ना डीठा ना सम्मलया, गली हो सोहागण पैने, तंतन कबहू मैं मिलया, पपे पासाओ परमेश्वर, वेखण को प्रपंच किया, देख बूझे सबक जाने, अंतर बाहर रब रहे, पपे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंद लया, गुर प्रसादी सेनर उबरे, जे हर शरणागत

स्वामी इन फल तोट न आवे तिन जरा न मरना नरक न परना जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही नानक पीड़ ना खाए जियो नाम लैन से सोह है तिन सुख पल होवे मन सेजन जाए जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला पहला शांत कर तीजा तू सुन हरना कालिया ई वाड़गेरा ताराम बिखबल मीठा चार दिन फिर होवे ताता राम फिर होए ताता खरा माता ना बिन परताप ओ जेव सायर दे लहरी बिजली जिवे चमक हर बाज राखा कोए नाही सोए तुझे बिसारिया सदकहे नानक चेत रे मन मरे हरना कालिया पावरा फूल पहंतिया दुख अद पारी राम मैं गुर पूछा अपना साचा बिचारी राम बिचार सगुर मुझे पूछया पवल बेली रातो सूरज चढ़या पिंड पड़या तेल तामन तातो जाओ मग बादा खाए चोटा शब्द बिन बेतालिया सच कहे नानक चेतरे मन मरे पवरा कालिया मेरे जीड़या परदेसिया इत पवे जंजा ले राम साचा साए मन मस की फासे जमजा ले राम मछली विशुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्ध कपाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया परत कार चित लाए हरस्यो छोड़ मनो अंदेसिया सद कहे नानक चेत रे मन जीड़या परदेसिया नदियां माव शून्या मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस परे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाण सदगुरु जिन चेतया बिन नाम हर के परम पूले पचे मूद अचेतया हर ना भगत नारे साचा से अंत ताही रुनिया सदकहे नानक शब्द साचे मेल चिरी मछुनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा शंत कर पहला हम करे साचा सोहला साचे शब्द सुहाया राम तान पिर मेल पया प्रभ आप मिलाया राम प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द

हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो हर घर मन पाया परम सुख पाया हर लहा पद निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सखाई प्रभु चूका आमन जान जियो।

प्रयो सह सुभाई छोड़ न जाई, मन लागा रंग मजीठा, हर नानक बेदे चरण कमल किश आन न मीठा, ज्यों राती जल माशली त्यों राम रसमाते राम राजे, गुरपूरे उपदेसया जीवन गद पाते राम राजे, जीवन गद स्वामी अंतर जामी आप लिगे लड़ लाए, हरतन पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कत हो जाए, प्राभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताग की मिटे ना दाते, जल संग राती माशली नान कर माते, चातक जाचे बूंद ज्यों हर प्राण अधारा राम राजे, मार्ख जाना सुप्रात मीत सब हूं ते प्यारा राम राजे, सब हूं ते प्यारा पुरख निरारा ताकी गत नहीं जानिए, हर सास ग्रास ना बिसरे कब हूं गुर सबदी रंग मानिए, प्रा पुरख जग जीवनो संतरस पीवनो जब परम मोह दुख।

मोर चायो नंगे आमन जामने आ, फिर साधु सरणी पड़ी गए चरणी अब टूटस मोजो किती है। को नानक शांत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत तब दिनियर देखिए। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डेवे मन ऐसी प्रीत कीजे जैसी तरण पतार उर्जी तेरे सिवे इहो मन लाल दीजे।

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोहलड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सरण।

तव महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा ते हर चंदौरड़ी अस्थिर किश नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभालिए हर एक बिन कछ अवर नाही भाव दुतिया जालिए मीत जोबन माल सर्वस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वड़ पाग पाईए सुख सहज समाही आसा महला पंजवा शांत कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कमला प्रपीत कमला प्रपीत है तीखण मद विपरीत है अवद अकार सजात गैबर बन कोर गैबर बन कोर है ग्रे मूस्त मन चोर है दिन करो अनदिन खात दिन खात जात बिहाद प्रबिन मिलो प्रभ करना पते जन्म मरण अनेक बीते प्रे संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूब ज्ञान हीनी तुझ बिना मुहि कमन मात कर जोड़ नानक शरण आयो प्रे नाथ नरहर करो गात मीना जलहीन मीना जलहीन हे ओ बिशरत मन तन खीन हे तत जीवन प्रे बिन होत सानमुख साहिबान

प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास चातरक चित प्यास हे कान बूंद बचित्र मन आस हे अल पीवत बिनसत ताप तापा बिनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत कहना सुंदर चतर सुजान स्वामी।

आप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रमाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया, हर कंठ लागे दिस भागे, मेरे नहा सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पए खान, बिनवंत नानक मेरी आस पूरन।

सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जम्मे।

तीर्थ नहावे अर्चा पूजा अग्रवास बहे कार योगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजय।

ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना की लिखिया आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा नीसान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे मिले सच ता तिनी सच कमाया सदगुर मिले सच पाया जिनके हिरदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर होमे चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ पविया ते तो लविया बहु पेख किया देही दुख दिया सौवे जिया अपना किया आनना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे अहनस तहरे मोन मगूता क्यों जागे गुरबिन सूता।

रसवा हो, कालजुग रास अगन का कूड़ अगे रसवा हो। महला पहला साम कैसे तंबर स्वामी, सच में आचे साच रहे सब को सच समावे। रेग कहे रहया पर पूर, राम नाम देवा मैं सूर। नाए लय प्राशित जाहे, नानक तो मोख अंतर पाहे। जुज में जोर शली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम पया। पार जाद गोपी ले आया, बिंद्रा बन में रंग किया। कल में वेद अथर्वण हुआ।

गोर चरण लाघम बिनवत पूछत कहे जियो पाया, कामन काज जग उपजे बिनस कहो मोहे समझाया। देव करो दया मोहे मार्ग लाभ हो, जित

ज्योतक जान बहुव्य करना तंत मंत्र सब औखद जान अंत तऊ मरना राज भोग अरशद्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे।

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संतो, ऐ सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जमनी हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौप दे। एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़,

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सर्वर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण शीश कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे।

मूड में लागे खिन में करे नबेरा हर जन उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई जोत पावे सत कर माने।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खेंच तेज सब लीना, श्रवणन विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननिक सह बस, थाके पंच दूत सब तस्कर,

मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तिरपन डसियले गुर प्रसाद दीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साज पछाने।

राम राम राम रमे रम रही है, साग स्यो पूल नहीं कही है रघाओ, कौआ कांक पूर चिराए, कह बिशियर को दूध पियाए, सत संगत मिल बबेक बुद होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वा

आस बड़ पाग हमारा तुर नार मुन जन कौतक आए कोड ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना आसा साज

आया गई तब रोमन लगत है मान बद क्रम रस कसे लोभाना बिनस गया जाए कहूं समाना कहे रविदास बाजी जग पाई बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई आसा बाणी भगत धन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रामत फिरत बो जन्म बेलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच बिख काम लुभ दराता मन बिसरे प्रभ हीरे अरहाओ बिख बल मीट लगे मन बौरे चार विचार ना जानिया गुणते प्रीत बड़ी अनपांती जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं रिदे निवासी जलत जाल जम फंद परे बिग पर संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया ध्यान मान मन एक मये प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त पये जोत समाए समानी जाके असली प्र पहचान्या तन्ने तन पाया तरणी तार मिलजन संत समान्या महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संघ

रीत है हर मेरी हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे एहा सेव बनी जियो अरहाओ। हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप हर मेरा पाई, हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई, हर बिन होर रास कूड़।

मिरसंगत गुण परगास जिन हर हर हरस नाम न पाया ते पाघीण जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखया लिखास। तन तन सतसंगत जित हरस पाया मिल नानक नाम परगास। गूजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम। मिल सतसंगत शब्द मन मोह है जब गोविंद गोविंद त्याई है। सब को दान दे प्रभ ओ है मेरे पाई जना मुको। गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा। मिल गुर साध संगत जन सो है रहाओ। सुख सागर हर भगत है गुरमत कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पाघीन मत भीके नाम सुनत आवे मन रोह है। कौआ काग को अमृत रस पाई है तृप्त विष्टा खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वडभागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा हर जन ऊतम ऊतम बाणी मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने श्रद्धा भगत सेती

सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरया जन नानक बल बल सब बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला।

आपन हाथ मतात सियानप कहू कामना आत जो अनरूप्यो ठाकुर मेरे होए रही ओ बात रहाओ देश कमामन तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवास त्यागे जंप ऊठ सिदास होए अनन महर की दृढ़ता आपस को जानात जो अनिंद निंद कर छोड़ो

सगल सिट को तणी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो। नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो, मुक्त पयो चम्यारो। गुजरी महला पंजवा, है नाही को बूजन हारो। जाने कमन पता, शिव बरंज अर सगल मोन जान। गहे ना सकाहे गता, प्रभ की आगम अगाध कथा। सुनिए अवर अवर विद बुझिए।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ करत करत अनकबो पाती।

आओ साध संग उधार एहो मन आढ़ पैर आराध काम क्रोध अहंकार बिनस मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी सरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक स्यों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रादया तारी बग

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमण श्रमण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काल।

गुर शरण तुम्हारी मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझ की स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किस रहे ना दिसै

आहे साहे सदा संभालिए आपे बगसे करे रजाए से ही नच है जोत भाव है जे गुरमुख शब्द भी त्यारी कहो नानक से सहज सुख पावे जिन कहो नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा तार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरण वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रति

क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अग्न जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ मोहल्ला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

छोड़ सियानप सगल मन तन अर्प तार पूजो गुर के पैर दुरमत जाए जर साध जना के संग भवजल बिखम तार सेवो सदगुर देव अगे ना मरो डर खिन में करे निहाल ऊने सुबर पर मन को हुए संतोख तिहाइये सदा हर तो लगा सदगुर सेव जा को कर्म तोर श्लोक महला पंजवा लगड़ी सो थान जोड़ नहारे जोड़िया नानक लहरी लख सयान डुबन दे ना मा पिरी महला पंजवा बन पी हावले एक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूर्ण कामा पौड़ी पाईन सब निधान तेरे रंग रतिया ना होवी पछोताओ तुद नू जपतिया पहुंच न सके कोय तेरी टेक जान गुरपूरे वाहो वाहो सुख ला चितार मन गुर पे सिवत भंडार करमी पाईए सदगुर नदर निहाल बौड़ना ताईए रखे आप दया।

का बोलिया प्रवान है दरगह पवे थाए भगता तेरी टेक अरते सच नाए जिसनु होए किरपाल तिसका दुख जाए भगत तेरे दयाल ओना मेर पाए दुख दर्द वड़ रोग ना पोगे तिस माए भगता यो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रहन इको एक त्याए पीवत अमृत नाम जान नामे रहे अघाए श्लोक महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनु विसरे नाओ नानक अनदिन बिरपते ज्यो सुन्ये करकाओ महला पंजवा प्री मिलावा जाथिये साई सुहा वीरुत कड़ी मोहत न विसरे नानक रविये नित पौड़ी सूर वीर वरियाम किने ना होड़िए फौजतानी हाठ पंचा जोड़िए दस नारी अवधूत देन चमोड़िए जिन जिन लैन रलाए इहो इना लोड़िए तैगुण इनके वस किने ना मोड़िए परम कोट माया खाई कौ कित बिद तोड़िए गुरपूरा आराध बिखमदल फोड़िए हाँ इस अगे दिन रात रहां कर जोड़िए श्लोक महला पंजवा केलबग सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोड़ केले सा उपजे

क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार राख लियो प्रभे अपने नानक सरबरे हार महला पंजवा खांदिया खांदिया मोह कठा पय नंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीवया जिन सच ना

मार्ग कैसे जीवे रग राई, तन ना बोना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर रखाओ, जब लग तागा बाहो बेगी, तब लग बिसरे राम स्नेही, ओशी मत मेरी जात जुला। हर का नाम लयो मैं लाह, कहत कबीर।

कह किन बूझिए रमैया आकुल री बाई रहाओ। क्यों आका से पंखी अलो खोई निरख्यो ना जाई, ज्यो जल माजे माचलो मार्ग पेखनो ना जाई। ज्यों आका से कड़ू अलो मृत सिना परया, नामे चे स्वामी बीठ लो जिन तीन जरया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे कर तीजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद दूता बशरे थनों बिटारे हो। फूल पावर जल मीन बकारे हो, माई गोविंद पूजा कहां ले चिराव। आवर ना फूल अनूप ना पावो रखाओ, मैला गर बेरे गए पोयंगा। बेख अमृत बसे एक संगा, तूप दीप नहीं बेदे बसा। कैसे पूज करे तेरी दासा,

पिंदेत जप नर सगल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सबटं भव भूत सर्वगतं एक ओंकार सत।

जिनके हृदय नाए घर स्वामी ए बिगड़ रूप बेरगटी ज्यो निगुरा बो बाता जाने ओ हर दर गए गए प्रष्टी जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साजना पग चगटी नानक पतत पवित्र मिल संगत गुर सदगुर पाछे छूटी शक्का एक देव गंधारी महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद माई गुर चरणी चित लाई है प्रहोय कृपाल कमर पर गास सदा सदा घर त्याई है रखाओ अंतर एको बार एको समय एक सुमाई है काट अव काट रव्या सब ठाई हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है उस करे शिव को मुन केते तेरा अंत नकत हूं पाई है सुखदाते दुख पंजन स्वामी जन नानक सदबल जाई है देव गंधारी माई होनहार सो होई है राज रे रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रखाओ कै फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है कब हु मैल परे अभमानी कब साधु संग तोई है ओए ना मेटे प्रभु का किया दूसर नहीं अलोई है कहो नानक तिस गुर बलिहारी जे प्रसाद सुख सोई है देव गंधारी माई सुनत सोज पै डरत मेर तेर तदो अभमाना शरण स्वामी की परत रहाओ जो जो कहे सोई पल मानो नाहिन का बोल करत निमखना बिसरोही है मोरे ते बिसरत जाई हो मरत सुखदाई पूर्ण प्रकर्ता मेरी बहुत यान पजरत निर्गुण क्रूप कुलहीन नानक हो अनंद रूप स्वामी परत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सदहूं गावत सुनत जपत उधारे वर्ण अबरना सब हूं हरहाओ जैते उपजो तई सुमायो ए बद जानी तब हूं जहां जहां ए देही तारी रह न पायो कब हूं सुख आयो पय परम विनाश कृपाल होए प्रभ जब हूं कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ साध संग तज लव हूं देव गंधारी मन जू अपने प्रभ पावो नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बुलाओ अरहाओ अनक अडंबर माया के बिरते तासु प्रीत कठावो जो अपनो स्वामी सुख माने ता में शोभा पावो दासन दास रेण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीव मुखो बुलाओ देव गंधारी प्रभ जी तौ प्रसाद प्रमंडारियो तुमरी कृपा ते सब को अपना मन में एव बिचारे ओ रहाओ कोट प्राद मिटे तेरी सेवा दर्शन दुखे उतारयो नाम जत महसूर पायो चिंता रोग बिदारयो काम क्रोध लोभ चूड़ निंदा साधु संग बिसारयो माया बंद काटे कृपा निध नानक आप उधारयो देव गंधारी मान सगल सियाण परही कर्ण करामन गार स्वामी नानक ओट गही रगाओ आप मेड पै सरनाई ए मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मानसु पाया परम अंधेरा लही जान प्रवीण स्वामी प्रा मेरे शरण तुम्हारी अही खिन में था थापन गारे कुदरत कीम ना पही देव गंधारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते गुर प्रसाद काहू जाते रगाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम इनको काल ना खाते रंग तुम्हारे लाल पै है राम नाम रसमाते मां किरबिख कोट दुख रोगा प्रभ

पूजेगा। दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर किसमय रहा समाए राम, सर्वे सुमाना आप स्वामी गुरमुख।

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नव निधे। ग्रे लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध

तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भए

आराम सुख सहज आनंद विरोध सदगी गुण गोपाल नित गाई पज साध संगे मिले रंगे बौड़ जोन ना ताई गह कंठ लाए सह सुखाए।

कोड़ अपराध परे पी तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण तेई रख लिहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पिखत संग सबक प्रभ नेरहू ते नेरे अरदास नानक सुन स्वामी रख लेहो करके चेरे तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम माया मोए मगन कढ़ लिहो मुरारी राम लोभ मोए बेकार बद्ध्यो अनक दोख कमावने अलिप्त बंधन रहित।

देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा पुत्र कलतर ना संग शोभा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन सा संगम सब मिथ्या संसारी। अराजन क्यों सोया तू नींद भरे जाग

तोड़े सच वस अज्ञान अंधेरा जाए सब किश देख तिसे का जिन किया तन साज नानक सरण करतार की करता राखे लाज पौड़ी जदों आपे थाड़ किया बै करते तदों पुछ ना सेवक बिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे जा अवर ना दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते दान सबना को दिया आपे सेव बनाईयन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे आपे करे सोतिया श्लोक महला तीजा गुरमुख प्रस

तेरे मन सच्चे पाणे जिन्ना आपे गुरमुख देव डियाई ते जन सच्ची दरगे जाने। सलोक मर्दाना पहला कल कलवाली काम माद मनुआ पीवन हार क्रोध कटोरी मुहे परी

जिसनु गुरमुख आप बुझाए सो सदगी दरगे पाए मान जेदी पैज रखे घर स्वामी सो सच्चा घर जान। श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए सबदे सो चेतन लावई जित सुख वसे मन आए तामस लगा सदा फिरे अहे निस जलत बिहाए जुत भावे सो थीए कहना किशु न जाए। महला तीजा सदगुरु फुरमाया कारी एक करे हो गुरु द्वारे होए के साहेब संभाले हो साहेब सदा हजूर है परमे के छौड़ कट के अंतर ज्योत तरे हो हर का नाम अमृत है दारू एहो लाए हो सगुर का पाना चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक ऐथे सुखे अंदर रखसी अगे हर्षों केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बृहस्पति।

राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुल आ जाए। कीमत कने न पाई इते न ले आ जाए। गुर कै शब्द भेदया, इन बिद वसया मन आए। नानक आप अमयोग है,

हिंदू मूले पूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहां तरनहार। पौड़ी सब क्यों तेरे वस है, तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा, सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो योगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ए योगी की नगरी सब को वस, पेकी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए। पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सुखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना।

नेतन सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे, मेरा स्वामी तित

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सोवेला जित प्रा मेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख पीसर तब की साध

एत उद देखो ओड़ तुम्हारी मोए निर्गुण गुण किसी ना जाता। नानक साधु देख मन राता वढ़ांस महला पंजवा।

पंजवा साध संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ऐ रखाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर पा पय निहाला जत कद पेखो साधु सरना हार गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंत मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़ांस महला पंजवा विसरनाई प्रभु दीन दयाला तेरी शरण पूर्ण कृपाला रहाओ जय चित आवे तो थान सुहावा जित वेला।

ब्राह्मणा सभ्यो पाइगन आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सा मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे। किस पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिले कर्म होआ तुर कदे। सब उपाय गिने आप आपे नजर करे, वढ़ांस महला।

निरकर अवस्था पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पेर रलिया लाजो बन बाला आंदना कंत सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हारंग राती जा चले सदगुर पाए वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सवा पार परा जिस

गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप शान गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडपा गो राम गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सत बैरागो ताचरते विचारी ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्या ई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया सुनाई वढ़ांस महला तीजा मन मेरेया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसे ओए न सके जम काल जियो काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए दूजे पाए परम विगुति मन मुखमोही जम काल कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल मन मेरे अंत तेरे निधान है बार वसना पाल जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सखाई मनमुख अंदले ज्ञान में गुण दूजे पाए खुवाई बिरनावे को छूटे नाही साबादी जमकाल नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्तना पाल मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कह एक सच लगे वापारा सतगुरु सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई मन कुमाया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई होमे मार सच शब्द सुमाने सच रते अदकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन्म भागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लगलागी अपना आप पछाणिया मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वड़पागे वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम ला लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए ला भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पद खोई गुरमत नाम आधार वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए रतन पदार्थ वणजी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा यो वापार आराम कूड़ बोल बिकामणी बहु वदे विकारा राम बहु वदे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वकाने बिन बूझे सुख ना होई आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा खोटे खरे

करो सुखदाते दियो सतगुर चरण गम तूरा। कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम। हर दानो हर दान देवे हर पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम जिनी आराध्या तिनका दुख परम पौ पागा। सेवक पाए मिले वड़ पागी जिन गुरचरणी मन लागा।

ठाकुर मेरे कित मुख तुसा लागी, गुण अवगुण मेरा किशना बिचारिया, बक्सलिया खिन माघी, नौंद पाई वजी वधाई, वाजे अनगल तूरे, कहो नानक मैं वर कर पाया, मेरे लाथे जी सगलब सूरे, सलोक क्या सुनिंदो कूड़, वंजन पवन चुलारिया, नानक सुनियर ते प्रवान, जो सुनिंदे सच तनी, शंत तिन कोल कुमाई, जिन प्रसरवणी सुनिया राम, से सह सुहिले, जिन हर गरसना पणिया राम, से सह सुहिले गुणे अमूल्य, जगत उधारण आए, भय बोत सागर प्रचरणा, केते पार लंघाए, जिन कौ कृपा करी मेरे ठाकुर, इनका लेखा ना गणिया, कहो नानक इस कोल कुमाई, जिन प्रसरवणी सुनिया, सलोक लोन लोई डेठ, प्यास ना बुझे मूह कणी, नानक से अखड़िया बयान,

ठाकुर मन से प्रधान हर से तीरंग रहते हर से अघाए सह सुमाए घड़ घर मैया जाते से ही सज्जन संत से सुविए ठाकुर अपने पाने कहो नानक जिन हर प्रा डिटा तिन कैसल कुरबाने सलोक दे अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूणिया नानक सबल जिनम जय कड़ उठा सच तनी संत तिन खनिये वन्या जिन मेरा हर प्रा डिठा राम जन चाह अगाने हार घर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अम्यो बूठा सुख पय दुख नास परम विनाश तन ते जब जगदीश ईसै जय जय मोह रहित विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिए वन्या जिन कड़ मेरा घर प्रभूटा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से ही कंडया नानक जाने सत साई संतना भारा शंत मिल जल जले खटा नाराम संग ज्योति ज्योत मिला नाराम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपे जानिए ते सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक प्रम पै गुण बिनस मिल जल जले खटाना वढ़हंस महला पंजवा प्रभु करण कारण सुमरथा राम रख जगत सगल देहथा राम समरथ सरणा जोग स्वामी कृपा निसुखदाता हाँ कुर्बानी दस तेरे जिनी एक पछाता वर्ण चिन्ह ना जाए लखया कथन ते अकथा बिनवंत नांग सुनो बिनती प्रभु करण कारण सुमरथा ए जी तेरे तू करता राम प्रभ दुख दर्द प्रम हरता राम प्रम दुख दर्द निवार खिनम है रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निदान पावे

नानक सहज सुभाए। वढ़ांस मोहल्ला पहला, बाबा आया है उठ चलना, यो जग झूठ पसारोवा। सच्चा कर सचड़े से भी है, सच करा सचियारोवा। कूड़ लभ जा थाए न पासी, अगे लाए न ठाओ। अंतराओ ना बैसो कही है, जो सुन्ये कर काओ। जमण मरण वड्डा वेछोड़ा, बिनसे जग सुबाए। लव तंदे माया जगत पुलाया, कार खड़ारू आए। बाबा आवो पाई हो, गाल मिले मेल मेर दे आसीसा है। बाबा सजड़ा मेल ना चुकई, प्रीतम किया दे आसीसा है। आसीसा दे वो भगत करे वो, मिलिया का क्या मिलो। एक पूले नहावो, थे हो थावो, गुरसबदी सच खेलो। जा मार्ग नहीं जाना, शब्द सुमाना, जुग जुग साचे वैसे। साजन सैन मिलो संजोगी, गुर मिल खोले फासे। बाबा नांगड़ा आया जग में, दो सुख लेख लखाया। लिखेड़ा सहा ना टले, जेड़ा पुरब कुमाया। बै साचे लिखया अमृत बिखया, जित लाया तित लागा। कामण यारी कामण पाए, बहु रंगी गलतागा। होशी मत पया मन होचा, गोड़ सा मक्खी खाया। ना मरजाद आया कल पीतर, नांगो बंद चलाया। बाबा रोवो जे किसे रोवना, जानीड़ा बंद पठाया है। लिखेड़ा लेखना मेटी है, दार हाकारड़ा आया है। हाकारा आया जात पाया, रुन्ने रोमण हारे। पुत भाई भातीजे रोवे, प्रीतम अत प्यारे। पै रोवे गुणसार संभाले, को मरे न मोया नाले। नानक जुग जुग जान सिजाना, रोवे सच संभाले।

अंतर सहज समाधि तिर रहया पर पूरे वेख हदूरे रंग माणे सहज सुपाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया हों तिन पूछो संतां जा।

आवे जावे। बिन सतगुर से वे फिक्का बोलना, नाम ना वसे मन माहे। नानक बिन सतगुर से वे जा पुर बद्दी मारियन, मुए काले उठ जाहे महला पहला। जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसर, नानक साई परी परीत जित साहिब सेती पत रहे पौड़ी। हर इको दाता सेविये हर एक त्याईये, हर इको दाता मंगिए मन चिंदिया पाईये। जे दूजे पासो मंगिए ता लाज मराइए, जिन सेविया तिन फल पाया तेस जन की सा भुख गवाईये। नानक तिन मिट्टो वारिया जिन अनदिन हिरदय, हर नाम त्याईये। लोक महला तीजा भगत जना कौ, आप तुठा मेरा प्यारा आपे लयन जन लाए। पातशाही भगत जना को दितियन, सिर छत सच्चा हर बनाए। सदा सुहिए निर्मले सतगुर की कार कमाए, हराजे ओए ना आखी है फिर मरे फिर जूनी पावे। नानक विण नावे नक्की वड्डी फिरे, होबा मूल ना पावे महला तीजा। तुम सिखिए साधन आयो जिचिर गुरमुख शब्द न लागे, सतगुर सेवै ना मन वसै विचों प्रम पौ पग। जेहा सतगुर नू जाने ते होवे ता सच नाम लिव लागे। नानक नाम मिले वड्याई हर दर सोहन आगे पौड़ी। गुर सिखा मन हर प्रीत है गुर पूजन आवे, हर नाम वणन जे रंग स्यों लाह हर नाम ले जावे। गुर सिखा के मुख उजले हर दरगे पावे, गुर सतगुर बोल हर नाम का वड़भागी सिख गुण।

अंतर सांत सदा सोह दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई।

ब्राह्मण घारा यो मनुआ सदा सुख वस सहज करे वापारा अंतर गुर ज्ञान हरतन है मुक्त करा मन घारा नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्स प्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए तो सदगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जे हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस घर नाम सुने मन अंद पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सदगुर सेवा कर घर नाम लया तिल गुरसिख कौ फाउ सदा नमस्कारी जो गुर कै फाणे गुरसिख चलिया श्लोक महला तीजा मन हड़के ने न पायो सब थके कर्म कमाए मन हड़के कर परम दे दुख पाया दूजे पाए रिद सिद्ध सा मोह नाम नवस्ते मन आए गुरसेवा ते मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए।

की खबर न पाई, अखी मीड़ चलिया अंधेरा, हर दर्द से न पाई, जम दर बादा ठौर न पावे अपना किया कमाई, नदर करे ताए अखी वेखा कहना कथन न जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई, निरपो निरंकार निर्वैर पूर्ण जोत समाई, नानक गुरमन परम न पागे सच नाम वड्याई, सोरठ महला पहला दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चूज वड़ाना जल थल।

प्रसन्न कोई न किसी जेह अंडज जेरज उत्पुज सेतज तेरे की तेजनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना महेरवंता तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किस दीजै परमत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख।

न जाने हिर फिर कीच बुड़ा ही जीव अंतर मैल लोभो झूठे बार नहावो काही जीओ निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जीओ पर हर लोभ निंदा कूड त्याग हो सज गुरबचनी फल पाही जीओ जो पावे त्यों राखो हर जीओ जन नानक शब्द सलाही जीओ सोरठ महला पहला पंच पदे

मन रे समझ कवन मत लागा, नाम सार अनस लूप हाने, हे पछताए अपागा रखाओ। आपत को हरख जात को रोवे, ए दुसुख ना लेन लागा, आपे दुसुख भोग पुगावे, गुरमुख सु अनरागा। हरस ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन इवरस खोया।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सु वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मगना पाए। नानक सतगुर मिले ता

सब जग मछली हर आपे, आप पुल न पुल ही प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिन्नी नाद है प्यारा, तुने आप जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तवतापे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हर स्थापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे सौ आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया, हर घर नाम निधान।

आद एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई तुण मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन दियो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई यो मन तेरा पाई रहाओ पा मलोवा मल मल तोवा यो मन तय को दिशा सुन मीता हो तेरी शरणाई आया प्रा मिलो।

पयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कहो गुर कृपा थारी साब अकुल निरंजन डीठा। सोरठ महला पंजवा कोल ब्रह्मण को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रदपाले निसार समाले एक गुण मूर्ख जाता रे हर आरात

साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरणा, संत हमारी ओर सतानी, संत हमारा गहना, हम संतन स्यों बने आई, पूर्व लिखे आप पाई।

सुखदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रखाओ काम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाई है हो रेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाई है काल न पाने अंतर विद जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधव पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो काटायो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांछित फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे।

कर लीना। मनवसे अविनाशी ताको बिघन न को लागे, जो सदगुर अपने रखे चरण कमल बसेर अंतर अमृत हरस जाके। हर सेवा सेव प्रव्यापने जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दाता के बलिहार है जिन पूर्ण पैज रखाई। सोरठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है, देव न हार न जाने जियो पिंड साजन रचिया, बल अपनो कर मान मन मूड़े देख रहे हो प्रस्वामी। जो करे सोई सोई जाने, रहे न कछुए शानी रखाओ। हे वास्वात लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़दे मह, पर दारा संग फक है चित्र गुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पड़दा तेरा ठाक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन, तुम बिन ओट न काई। काढ़ लियो संसार सागर में, नानक प्रभु शरणाई। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई। गुरपूरे की बाणी जप अंध करो नित प्राणी, हर साचा सिमर हो पाई। साध संग सदा सुख।

जिसनु कर्म प्राप्त होवे तो जन निर्मल थीवे। विघन बिनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा, गुण गाव अजुत अविनाशी आनंदन हारंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कदा सुहेली, आद अंत मद नानक तो प्रभु होवा बेली। सोरठ महला पंजवा पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी थारी, संत या बताव होकारी, जित हो में गर्भ निवारी रखाओ। सर्व भूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी, देखो प्रभु अपने संगे चूके पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइये गुरु दुआरी, कहो नानक जिस मस्तक लिखया तिस गुर मिले रोग बिदारी। सोरठ

ए भीतर ते इनको डारो, अपन निकट बुलाओ, अपनी विद आप जनाव हो, हर जन मंगल गाव हो रखाओ। बिसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पाव हो, गुरपूरा फेट्यू वड़ भागी, जन नानकते ना ताव। सोरठ महला पंजवा, जाके सिमरन सब कुछ पाइये, विरती काल ना जाई, तिस प्रत्याग अवर कतराच्यो, जो समय रहा सुमाई। हर घर सिमरु संत गोपाला, सार संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ। सार समाले नित प्रतपाले, प्रेम सहित गल लावे, कौ नांग प्र तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे।

गुर गोपाल प्रसोई, जा की शरण पया सुख पाई है, बहुत दुख ना होई रहाओ। वड भागी सा संग परापत, तिन पेट दुर्मद खोई, तिन की तूर नानक दास बांछे, जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा, जन्म जन्म के दुख निवारे, सूका मन साधारे, दर्शन पीड़ित होत निहाला, हर का नाम विचार, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देव है, काटे जमकी फंदा रखाओ। समर्थ पुरख पूर्ण विधाते, आपे करने हारा, अपना दास हर

मिले स्वामी प्रीतम अपने, हर मंदिर सुखदाई, हर नाम निधान नांग जन पाया, सगली इश पुजाई। सोरठ महला पंजवां, गुर के चरण बसे रिध पीतर, शुभ लखन प्रभ कीने, हय कृपाल पूर्ण परमेश्वर, नाम निधान मन चीने, मेरो गुर रखवारो मीत, दून चौनी दे वड़ियाई, थोबा नीता नीत रहा, जी जन प्रसगल उधारे, दर्शन देखन हारे, गुरपूरे की अचरज वड़ियाई, नानक सद भले हारे। सोरठ महला पंजवां, संचन करो नाम तन निर्मल, तरती अगम अपार, बिरछ मनोद आना सुगमानो, खाए जीवो सिख परवार, हर के चरण कमल आधार, संत प्रसाद पायो सभोयत, चढ़ लंगो बिर संसार रघाव, है कृपाल पूर्ण अविनाशी, आपे की निसार, पेग पेग नानक बिसानो, नानक नहीं सुमार। सोरठ महला पंजवां, गुरपूरे अपनी कलतारी, साब का उपजी दया, आपे वेल वडाई कीनी, कुशल खेम सा भया, सतगुरपूरा मेरे नाल, पार ब्रह्म जिस सदा निहाल रघाव, अंतर बार थन थनंतर, जल कद पेखो सोई, नान गुर पायो वड़ पागी, ते जेवड़ अवर न कोई। सोरठ महला पंजवां, सुख मंगल कल्याण सहज तोन, प्रभु के चरण निहारिया, रखन हारे राखो बार, सतगुर ताप उतारिया, उबरे सतगुर की शरणाई, जाकी सेवना बिरती जाई रखाव, कर मैं सुख वार पुन सूखा, प्रभ अपने पय दयाला, नानक बिघन ना लागे को, मेरा प्रभु वा कृपाला। सोरठ महला पंजवां, साधु संग पया मन उद्यम, नाम रतन जस गाई, मिड़गी चिंता सिमर अनंता, सागर तरिया पाई, हृदय हर के चरण मसाई, सुख पाया सहे तुन उबजी, रोगा कान मिटाई रखाओ, क्या गुण तेरे आख वखाना, कीमत कह न जाई, नानक भगत पय अविनाशी, अपना पया सखाई। सोरठ महला पंजवां, गए कलेस रोस अविनाश, प्रभ अपने कृपा थारी, आड़ पैर आराधो स्वामी, पूर्ण काल हमारी, हर जियो तू सुख संपत रास, राख लहो पाई मेरे कौ, प्रभ आगे अरदास रखाओ, जो मांगो सोई सोई पाव, अपने खसम परोसा, को नान गुरपूरा पेट्यो, मिट्यो सगल अंदेसा। सोरठ महला पंजवां, सेमर सेमर गुर सतगुर अपना, अगला दुख मिटाया, ताप रोग गुर बचनी, मां

करे मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया, वड्डी वड्याई नानक करते की, साच सब सद पाखिया, सोरठ महला पनवा, भय किरपाल स्वामी मेरे, ते साचे दरबार, ता गुरताप गुआया पाई, ठांड पई संसार, अपने जी जंत आपे राखे, जमे की हड़तार, हर के चरण हृदय उरतार, सदा सदा प्रभु सिमर गे पाई, दुख किल भे काटन हार, हराओ तिस की सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, कारण कारण समरसो पाई, सचे सची सोए, नानक प्रभु ते आई गे पाई, मन तन शीतल होए, सोरठ महला पनवा, संतो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रा विसरो नाही, मन चिंदे अड़ा फल पाई, हराओ सब गुर पूरे ताप गवाया, अपनी किरपा थारी, पार ब्रह्म प्रापय दयाला, दुख मिटिया सब परवारी, सरबन दान मंगल स्वरूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेसर, उदरिया सब संसारो, सोरठ महला पंजवा, मेरा सतगुर हवाला होआ, धार किरपा प्रभात दे राखिया, हर गोविंद नवा नरुआ, राव ताप गया प्रभ आ मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगते सफल पाए, सदगुर कै बल जाय, हलत पलत प्रभ दो में सवारे, हमारा गुण अब गुण ना बिचारिया, अटल बचन नान गुर तेरा, सबल कर मस्तक धारिया, सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सब सिके की है, सोई संसगाई, अपने सेव किया पे रख, पूर्ण पई बढ़ाई, पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी।

गौरी लाती संग मिला लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सरपस दीने आपे आप मिलाया कहो नानक सर्व तोग पूर्ण पूरा सदगुर पाया।

तार सगल जगत है जैसे सुबना बिनसद लगत न बार रखाओ बारू पीत बनाई राजपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो खां गवार अजहू समझ कछ बिगड़ो नाहिन ताज ले नाम मुरार कहो नानक रिज मत साधन कहो वाख्यो तोय पुकार चोरठ महला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सागर जगत अपने सुख लागे हो दुख में संग न होई रहा दारा मीत पूसन बंदी सगरे तन त्यों लागे जब ही निरतन देखो नरको संग छाड़ सा भागे कहो का या मन भौरे कहो इनसे उन्हों लगायो दीना नाथ सगल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो सोरठ मल्ला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ था छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर पर पंज उधर निज पोखयो फस की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखेन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत्य गोविंद फिरता आओ सिरानी हो नान घर बिरध पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं मान थोक सुने वर पै नहीं जा कह कंचन माटी मान है रखाओ नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोते रहे न्यारो नाय मान अपमाना असा मनसा सगल त्याग गए।

सागर तो बैरागी सबन वेद्या मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई आओ। असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमे पावे हिरदे शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावे एको चेते मनुआ ना डोले आवत वर्ज रखावे सहजे माता सदा रंग राता साचे की गुण गावे मनुआ पौन बिन सुखवासी नाव से सुख पाई जेबा नेत्र सोतर।

दो तुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए हम पराधी निर्गुणे पाई तुझ ही ते गुण सोए मेरे प्रीतमा तू करता कर वेख हो पापी पाखंडिया पाई मन तन नाम सेख रहाओ दिख माया चित मोया पाई चितराई पद खोए चित में ठाकुर सच बसे पाई ये गुर ज्ञान सुमोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सुम बैरागिए पाई दार कर साच अपूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर बिले सुख पाया पाई चूका मनो गुमान जल मल काया मंज गे पाई ही मैला तन होए ज्ञान महार सुनाई गे पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूज गे पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बूढ़े तेहे गुर बिन अलख न लखिए पाई जब बूढ़े पद खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाई जय पावे तय दे बैयर बोले मीठली पाई साच कहे पिर पाए फिर गए बेदी सच वसी पाई अद करही हरनाए थको आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो बीदे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईदन अदकस के लिए पाई पाव करन चक पाए

साहब जग जिने ओ पाया भाई करण कारण समरत जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वत किन कहिए क्यों देखिए भाई करता एक अकथ गुर गोविंद सलाइए पाई जेते जापे तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जने अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब किश गए भाई नौनद परे भंडार जिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमे अपार जी जंद प्रदपाल दा पाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पेटिए पाई शब्द मिला मनहार सच्चे चरण सरे विगे पाई प्रम पहो वे नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवे परगास गुर बचनी सुख उपजे पाई साव फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई पेखे सुने हजूर जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई तिस दिन मरिए चूर करन कराम समर्थो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश पावे ता मेल लै पाई हृदय नाम निवास गुरमुख कमल प्रगासिए पाई हृदय होवे प्रगास प्रड पया प्रताप प्रापाई मौल्या तरत आकाश गुरपूरे संतोखिया पाई अहेनस लागा पाओ रसना राम रवे सदा पाई साचा साध सुआओ करणी सुन सुन जीव्या पाई निचल पाया थाओ जिस प्रतीत ने आवी पाई सो जीड़ा जल जाओ बहु गुण मेरे साहेबे पाई हौथ के बल जाओ ओ निर्गुणिया रे पाल दा पाई देन तावे थाओ रिजक समागे सास सास पाई गूड़ा जा का नाओ जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करम आओ जिस बिन कड़ी ना जीविए पाई सर्व कला भरपूर साध ग्रास ना विसरे पाई पेखो सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्व हया भरपूर जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मर दे चूर अंचल लाए तराया पाई भौजल दुख संसार कर कृपा नदन निहालिया पाई की तोन अंग अपार मन तन शीतल होया पाई हो जन नाम आधार नानक ते सरणा गति पाई जे किल रख काटन हार सोरठ महला पंजवा माद गर्भ दुख सागरो प्यारे ते अपना नाम जपाया बार काढ़ दिख पसरिया प्यारे माया मोह वधाया जिसनु की तो कर्म आप प्यारे।

रहे हो नगन फिरे हो बनमाही तड़ तीर्थ सब धरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीर्थ जाय बस्यो सिर करवत तराए मन की मैल ना उतरे ए बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी गैबर गैबर बहुबद दान दातारा अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे नै मिल गए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडौत खड़ कर मारत रहता हौ करत बंधन मैं परया नै मिल गए ए जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहे आ वडी आर जा फिर जन्म हर सो संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अपारा सेज सोने चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा।

भगत जिना कै संग पाप गुवावना जन नानक सद बलिहार बल बल जावना। श्लोक मोहल्ला चौथा। अंतर अज्ञान पई मत मध्यम सतगुर की प्रतीत नाही। अंदर कपट स कपटो कर जाने कपटे खपे खबाही। सतगुर का पाणा चित न आवे अपने सुहाए फिराही। कृपा करे जे अपने ता नांग शब्द सवाही। महला चौथा। मनुख माया मोह आपे दूजे पाए मनुआ थिर नाहे। अंधन जल रह दिन राती होमे खपे खपाहे। अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकना कोई जावे। कोई आप दुखी तो कभू ना पावे जन्म मरे मर जाहे। नानक बख्श लहे प्रसाचा जे गुर चरणी चित लाहे। पौड़ी। संत भगत परवान जो प्रापाया सही बचखण जंत जिनी हर त्याया। अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया। नानक पय पुनीत हर तीर्थ नाया। श्लोक महला चौथा। गुरमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाये। नामो चित वे नाम पढ़े नाम रहे लिव लाए। नाम पदार्थ पाया चिंता गई बलाए। सदगुर मिले नाम उबजे तिसना भुख सब जाए। नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए। महला चौथा। सदगुर पुरख जे मारिया परम परमिया कर छोड़ गया। ओस पिछे वजे फकड़ी मोह काला आगे पया। ओस अरल बरल मोह निकले नित झगू सुड़दा मोआ। क्या होवे किसे ही दे कीते जां तुर किरत उस दा एहो जेहा पया। जिथे ओ जाए तिथे ओ झूठा कूड़ बोले किसे ना भावे। वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की। जैसा कोई करे तैसा कोई पावे यो ब्रह्म विचार होवे दर साचे अगों दे। जन नानक आख सुनावे। पौड़ी। वो सच्चे बद्धा थे हो रखवाले गुर दिते। पूर्ण होई आस गुर चरणी मन रते। गुर किरपाल बेअंत अवगुण सब हते। गुर अपनी किरपा तार अपने कर लेते। नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते। श्लोक महला पहला। ता की रिजाए लिखिया पाए अब क्या कीजे पांडे। हुक्म हुआ हासिल तदे हुए निबड़िया। पंडे जी कमांदे। महला दूजा। नक नथ खसम हथ किरत थके दे जहां दाने तां खाने। नानका सच हे पौड़ी सबे गल्ला आप थाड़ बहाले ऊन। आपे रचन रचाए आपे ही काले ऊन। आपे जंत उपाए आप प्रतपाले ऊन। दस रखे कंठ लाए नदर निहाले ऊन। नानक भगतां सदा आनंद पाओ दूजा जा लेन। श्लोक महला तीजा। ए मन हर जी प्याए तू एक मन एक चित पाए। हर किया सदा सदा वड्याईया दे ना पछोताए। हो हर के सद बलिहारण जित सेवे सुख पाए। नानक गुरमुख मिल रहे हो में शब्द जलाए। महला तीजा। आपे सेवा लायन आपे बख्श करे। सबना का मां प्यो आप है आपे सार करे। नानक नाम ध्यान ते निज करवा सके जुग जुग शोभा होए। पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करते मैं तुझ बिन अवर न कोई। तुझे आपे सिट सिरजिया आपे फुन गोई। ताबे को शब्द वर्तदा जो करे सोई। वड्याई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुरसोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की। कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिर नाई। उले जारे उले गाडे तेरी गद दुहू ना पाई। मन रे संसार अंध गहेरा चौध पसरे हुए जम जेवर आ रहा। कवत पड़े पड़ कविता मुए कपड़ के दारे जाई। जटा थार तार जोगी मुए तेरी गत इने ना पाई। दर्ब संत संजराजे मुए गड़ले कंचन पारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम ना बिन सबे बगूते देखो निरख शरीरा। हर के ना बिन किन गत पाई है उपदेश कबीरा। जब जरिगे तब हुए

फूलिया जब दस मास उर्द मुकरता सोधन कैसे फूलिया रहा जो मधमाखी क्यों सठोर रस जोर जोर तन किया मरती बार लिहो लिहो करिए भूत रहन क्यों दिया ज्योरी लाओ बरी नार संग पई आग गए सजन सुहेला मारकट लो सब लोग कुटम पयो आगे हंस अकेला कहे तो कबीर सुनो रे पानी परे कागरस बुआ झूठी माया आप बंधाया जो नलनी प्रमसुआ वेद पुराण सबे मत सुन कर करी कर्म की आसा काल ग्रह सब लोग सियाने उड़ पंडित पै चले निरासा मान रे सरयो ना एक काजा पजो ना रग पग राजा रखाओ बाण खण जाए जोग तब कीनो कंद मूल चुन खाया नादी बेदी सब दी मोनी जमके पटे लिखाया।

अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कथनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई,

हो, ऐसो बेडी बन ना साको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस जाखे, पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सोनरी बाई।

अणमड़िया मंदल बाजे मेरे सामन कन हर गाजे बादल बिन बरखा होई जाओ तत विचारे कोई मोको मेरे ओ राम स्नेही जे मिले देश सुदेही रखाओ मिल पारस कंचन होया मुख मनसा रतन परोया ये पाओ गया परम पागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर कुंभ समानिया सब राम एक कर जानिया गुर चेले है मन मानिया जन नामे तत पछानिया राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर मैं ओदध जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए प्रमेयस जैसा मानेंगे होए न तैसा रहाओ नरपद एक सिंहासन सोया तुमने पया पिखारी अशतराज बिशरत दुख पाया सो गल पई हमारी राज पुयांग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया अनक कड़क जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब कड़ भुग सोई कहे रविदास हाथ पैने रह सहजे हुए सुहोई जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने शूटन को जतन करो हम शूटे तुम आराधे माधवे जान हो जैसी तैसी अब कहां करोगे ऐसी रहाओ मीन पकर फांक्यो अर काट्यो रांद कियो बहुबानी खंड खंड कर पूजन कीनो तउ न बिसरो पानी आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा कहे रविदास भगत एक बाडी आप हे कासु कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सही दुलाभ जन्म पुन फल

सास मास तब जियो तुम्हारा, तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहिबा, क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोख छिपाइए, पुरब लिखे का लहना। नाम खसम का चितन किया, कपटी कपड़ कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया, ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक, किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया, जीव ते हां मर रही है। तनासरी मोहल्ला पहला, कर दूजा एक ओ अंकार।

मोत के ताल, क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल, जैसी नदर करे तैसा होए, बिन नदरी नानक नहीं कोय। तनासरी मोहल्ला तीजा, नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सो चित लागे तिरकाल ना खाए रहाओ। सच सिमरे होवे प्रगास, ताते बिखिया महे उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गद पाई, ऐसी सेख सेवा करे जिसका जीव तस आगे तरे। साहिब पावे सो प्रवान, सो सेवक दरगह पावे मान, सतगुर की मूर्त हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी सो तरे प्यार, ताको पावे मुख द्वार, जब तब सब इहो सब जगह सार। तनासरी मोहल्ला पहला, जीव तब है बारो बार, तब तब खावे बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विललाए। बहुता बोलन चखण होए, बिन बोले जाने सब सोए रहाओ। जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए। जेता मोह प्रीत स्वाद, सबा कालख दागा दाग, दाग दोष मुझ चलिया लाए।

राग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कुमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच लाए।

जो हर सेवे संत भगत तिन के सा पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी अरख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नी डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोरचा लग संगत साध सवारी जो कंचन बैसन तरतायो मल काटी कटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर उतारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर होमे मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरखे पारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ पागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कै नामरता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ संत जिना की जात हर स्वामी तुम ठाकुर हम संगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बोलागी क्या हम किरम नानक कीरे तुम वड़ पुरख वडागी तुमरी गत मिल कह न सके प्रभ हम क्यों कर मिले अपागी हर प्रस्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सदगुर सदपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिसके सद कुरबानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल तब के लख पाप ले जानी रखाओ ऐसा संत सद जिन पाया ते वड़ पुरख वडानी तिनकी तूर मंगे प्रस्वामी हम घर लोच लुचानी हर घर सफर बिरख प्रस्वामी जिन जप्यो से त्रिवतानी हर घर अमृत पी त्रिवता से तबलाथी पूख पुखानी जिनके वडे पाग बड़ ऊचे तिन घर जप्यो जपानी तिन घर संगत मेल प्रस्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चल है गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानो हर घर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई गुर सेव हो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च घर बंद हो मत जानो आज के काली हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मिलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर घर बूंद पए हर स्वामी हम चातरक बिलल बिललाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती हर बिन रहे ना सको एक राती ज्यों मिल अमले अमली मर जाई है त्यो हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सरवर अगह हम ले ना सके अंत माती तू परे परे परम पर स्वामी मित जानो अपन गाती हर के संत जना हर जप्यो गुर रंग चलू ले राती हर घर भगत बने अज सोभा हर जप्यो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरणाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर जो का धर्म कहो तुम पाई के छूटे हम छुटका की हर हर जा बेड़ी हर तुलखा हर जप्यो तरह तरह की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जप्यो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया का छूटी जमकी बाकी हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी
ਸਿਰ ਚਰਿਓ ਚੰਦ ਚੰਦਾ ਕੀ ਤੁਮ ਵੜ ਪੁਰਖ ਵੜ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਤੁਮ ਆਪੇ ਆਪੇ ਅਪਾਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈ ਕਰਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਸਾਕੀ।

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी और पूरे प्रगट कर दीने राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव शेख खट बोले मुख आगर

पतत पामन गोसाई पोर सूह आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभु के मन पाई नाम जपत तृष्णा सा बुझी है नानक त्रिप्त अघाई तन्हा श्री महला पंजवां जिन कीने वसे अपने त्रै गुण

साल प्रसाद हर हर हर गाए विखे ब्याल तब हुटो अरहाओ न सुनिए न मुगते बकिए न मोहे ओडीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सबके लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किसी वाद काड किसी पै सगले लर लर मुआ ओं बलिगारी सतगुरे अपने जिन यो चलत दिखाया गूजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे।

अखंड हो अनकबीरी समझाव हो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखाव हो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम्हारी

पाओ निवार, बंधन काट लियो अपने कार, कभू न आवे हार। तेरी शरण पया हो जीवा, तू समरथ पुरख मेहरबान, आठ पहर प्रभु को आराधी, नानक सद कुरबान। राग तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हां हां प्रभ राख ले हो, हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम देहो, रहाओ अगर कुटुंब सागर संसार।

आद अंत दयाल पूर्ण तिस बिना नहीं कोए, जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए, वेद सिमरत कथे सासत भगत करे विचार, मुक्त पाई गे साध संगत बिरस

चरण गए प्रभ अपने, सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवां, पर हर ना लोभ चूड़ निंद, ए भी करत गुदारी। मृत न आस मिथ्या मीठी, ए टेक मने साधारी। सागत की आवरदा जाए बिरतारी, जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव। काम नहीं गावारी रहाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, ए बंधन छुटकारी। बूढ़ अंध नानक प्रकाड, साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवां, सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना। शीतल तन मन छाती, रूप रंग सुख तन जी का। पार ब्रह्म उरे जाती, रसना राम रसायन माती। रंग रंगी राम।

जन राम नाम रंग जागा, आस शीज गया सब तन ते प्रीतम स्यों मन लागा। राव जय जय पेखो तय नारायण, सगल कटा मैं तागा, नाम उलक पीवत जन नानक,

राम रघाव सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना निट न आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोर सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो सो अगर मेहमाना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यांत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जमना छापन तनासरी महला पनवा मांगो राम ते सब थोक मार्ग को जाचत श्रम पाईए प्रभ के सिमरन मोख रहाओ ओखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा सिंध सेव सज पाईए दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिनखा सिमरन भोक नानक जन्म मरण पै काटे तिन साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझे हर कै नाम मां संतोख होवे गुरबजनी प्रभु लागे पूर्ण ध्यान रहाओ मां कलोर बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूर्ण होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम करम लिखिया।

सूवे पतत उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उच्चारण अंत पायो गुणे सुख सागरा ब्रह्मत नागरा भगत वच्छल नानक गायो तनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो।

दुख भंजन ताशु मना लगाना जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना तनासरी महला नावा ते जोगी को जुगतना जानो लोभ मोह माया ममता फोन जे कड़माए पछानो अरहाओ पर निंदा उस्त न जाके कंचन लो समानो अर्घ सोगते रहे अतीता जोगी ताए बखानो चंचल मान दहत को तावत अचल जाए ठहरानो ओ नानक हे बिद को जो नर मुक्त ताए तुम मानो तनासरी महला नामा आप मैं कौन उपाव करो जेवद मन को संसार चूक।

तन्मय मनुआ मन में साचा, तो साचा मिल सचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सदगुर पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देख, फट ना पतीज ना बो पेख, हर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रामन पति आया, पड़ पड़ फूले चोटा खावे, बहुत सियाण आवे जागे, नाम जपे पो भोजन खाए, गुरमुख सेव करे समाए, पूज सिला

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई प्रभ सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण फिर सो प्रीत प्यारी फिर कर सोहे नार।

पंजनों जियो, दुख हर्त करता सुखे स्वामी, चरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा, पाल एक महे तराया, पूरे या सर्वथाई, गुर ज्ञान नेत्री अंजनों, बिनवंत नांग सदा सिमरी, सर्व दुख पय पंजनों, आप लिगे लड़ लाए, कृपा तारिया जियो, मुए निर्गुण नीज अनाथ, प्रभ अगम अपारिया जियो, दयाल सदा कृपाल स्वामी, नीचता पणहारिया, जी जनसा वस तेरे, तगर तेरी सारिया, आप करता आप भुगता, आप सगल बीचारिया, बिनवंत नान गुण गाए जीवा, हर जप जपो बनवारिया, तेरा दर्श अपार, नाम अमोले जियो, नित जपे तेरे दास, पुरख अतोले जियो, संत रसन उठा आप तूठा, हर से सही मातया, गुरचरण लागे महापागे, सदा अनदिन जागया, सदा सदा सिमर तब्द स्वामी, साज साज गुण बोलई, बिनवंत नानक तूर साधु, ना प्रभु अमोलई, राग तनासरी, बाणी भगत कबीर जी की, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरू मर मना जाना, संत संगत आराम हृदय बसाई रहाओ, हनुमान सरगरड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, प्यार वेद आर सिमरत पुराना, कमला पत कवला नहीं जाना, कह कबीर सो परमे नाही, पगलग राम रखे सर नाही, तिनते पैर पैर ते करिया, आप कटे तन छीजे, काल हेरी फिरे बदक ज्यो, कहो कमन बिद कीजे, सोदन आमन लागा, माल पिता भाई सुध बनता, कहो को है का हरहाओ, जब लग जोत काया मैं बरत, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कशु न सूझे, कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना, जो जन पाओ पगत कह जाने, ताको अचरज काहो, ज्यों जा जल में पैसन निकसते,

के नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अदकाई जिन त्रेण थर मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्व करत हो बिरस जाए झूठी देही अरहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई पारे जोजन छत्र चले था देही गिरज ना खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अदकाई कहां पयो दर बंदे हाथी खिर में पई पराई दुर्वासा से करत ठगोरी यादव ए फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए तस बय रागन मोए बस कीनी पंचो का मिट नावो छत्र दोए परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाचे बौर न आवन पावो अमृत बाणी कढ़ते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है शीना कर मिनत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ये संसार ते तब ही छूटो जो माया नहीं लपटावो माया नाम गर्भ जोन का ते ता दर्शन पावो इत कर पगत करे जो जान तेन पौ सगल चुकाई है तहत नाम दो बार क्या परम हो ए संजम घर पाइये मार वाड़ जैसे नीर बाल बेल बाल कर जो कुरंक निसनाद बाल त्यो मेरे मन रामैया तेरा नाम रूढ़ो रूप रूढ़ो अतरंग रूढ़ो मेरो रामैया अरहाओ जो तरणी को इंद्र बाल कुसुम्बा जैसे पवरला जो कोकल को अंब बाल त्यो मेरे मन रामैया चक्री को जैसे सूर बाल मान सरोवर हंसला जो तरणी को कंत बाल त्यो मेरे मन रामैया पार्ग को जैसे खीर बाल चात्रक मो जैसे जल थरा मछली को जैसे नीर बाल त्यो मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगर मुन चाह है बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरु नाम बाल त्यो नाम में मन बीठला पहल पुरगे पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानऊ हर हर नचंती नचना पहल पुरसा बिरा

किरपयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवन बाणी तुजस पूर राखो, मन सुमद कर करो चरण हिरदे धरो, रसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन कटे, मैं तो मोल महगी लई जी सटे, परहाओ सा संत बिना पाओ नहीं उपजे, पाविन भगत नहीं होए तेरी, कैरव दास एक बेनती हरस्यों, पैज रखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे, अरहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो, काजपे नाम ले तुझे कोचारे, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माए पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तुही चबर ठोलारे, दस अठा अड़सठ चारे काणी, एह वर्तन गए सगल संसारे, कह रवदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, तनास

जंगम जाती कायो तूप दीप नहीं बेद कायो पूजो पाती काया वो खंड खोजते नविंद पाई ना कछ आए वो ना कछ

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी बिन गाक मी का काखा। रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिका नोन लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। हरहाओ मानमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परमु एका वारी माया को अंग बिख चाखा। हर घर साध मिलो जननी के हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है तो वड़ अगमड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा अंबार कशु न जाने गातमित तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना। हर कृपा तार दीजे मत ऊतम कर लीजे मुग्ध सयाना। मेरा मन आलसिया उगुलाना। हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन कर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। कर कीर्त जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जगदीश जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम, जैत सरी महला चौथा। आपे जोगी जुत जुगा।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भत है संचंत दिखिया शलंग शिद्रंग नानक बिन घर संग न चालते पेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिस्तम सुना अड़ना लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माए।

नाद को रंग के बेदया सन्मुख उड़तावे पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलंग सास सास आराधन है न विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजाहे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभाहे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कबहू चूरी है त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरी है कोय पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामंग सर्वणंग सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सद बलिहारंग जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यो पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रा मत्था हर्ज लिखे बेअंत सोह है से हत्था चरण पुनीत पवित्र चाले प्रापत्था संता संग उधार अगला दुख लत्था श्लोक पावी अदोद करणंग आ रमणंग संजोग पूर्ण है गोपाल दस पेटंग सबल नाम

चुग से मन को परतन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी पद है नाम मेरे परिवार है नाम सकाई सदा मेरे संग हर नाम को निस्तारे बिखे बिलास सही तबो तेरे चलत न कशु संगारे इष्ट मीत नाम नानक को हर नाम मेरे पंडार टोडी महला पनवा नीके गुण का ओ मिटही रोग मुख उजल मन निर्मल होई है तेरो रह ईगा उहा।

गोविंद आचे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आचे राम श्याम गोविंद गो अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध शिष पावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन को ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सद गुरु दान देवा।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोट अंतर के पाप सब खोवे, हर पवजिल पार उतारा रखाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निकट बस्त

तन महल न पावे विण कर्मा किश पाइये नाही जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती माया माए समाणी इन्नी बाती सो पाइये नाही भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे किन्नी बाती सो पाइये जो किश करे सो भला करमानिए। हिकमत हुक्म चुकाइये जा के प्रेम पदार्थ पाइये तौ चरणी चित लाइये। सौ कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा परमल लाइये। एव कह सुहागणी पैणे किन्नी बाती सौ पाइये आप गवाइगे ता सौ पाइगे और कैसी चतराई। सौ नदर कर देख सोधन लिख कामण नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई। ऐसे रंग राती सहज की माती अहे निस पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप चखण कहिए सा सियाणी।

बाद तब आए हो मुख समाहो हुक्म सा वर्तनी सच साहेब सचा खेल सब हरतनी साल आए हो सच सब ऊपर हरतनी जिस नाही कोई शरीक किस लेखे हो गनी हरहाओ पौन पानी धरती आकाश घर मंदिर घर बनी विच वरत नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित निफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने वाल वंच कर झूठ।

मेल न होई, तात मिले हुन तात को लिव लिवै को तावे, पुर प्रसदा दी जानिए तो आन पो पावे, पाना वाड़ी हुए कर खर सार न जाने, रसिया हो वे मुस्का तब फूल पछाने, आप्यो पीवे जो नानका प्रम प्रम सुमावे, सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे, तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाइया, आए मिल गुरसिख आए मिल।

तेन हर फल पावे, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन्ना जी प्रवनाले, ओए जप जप प्यारा जीम दे हर नाम समाले, जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन कौ कुम जाया, ओए आशटे परवार सिउ सब जगत छडाया, गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तन्नो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुन्नो, जो गुर सिख गुर सेवदे से पुन पराणी, जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुरबाणी, गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाईया, हर दरगे पै नाईया हर आप गल लाईया, जो गुरमुख नाम त्याय दे तिन दर्शन दीजे, हम तिनके चरण पखाल दे धूड़ कोल कोल पीजे, पान सुपारी खातियां मुख बीड़ियां लाईया, हर हर कदे ना चेते हो जाम पकड़ चलाईया, जिन हर नामा हर चेतिया हिरदे उरतारे, तिन जम नेड़ न आवई गुर सिख गुर प्यारे, हर का नाम निधान है कोई गुरमुख जाने, नानक जिन सतगुर फेटे।

चेतना है तो चेतल है, निर्जनमय प्राणी छिन छिन औद विहात है, फूटे कड़जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना, आजू काज बिगड़े हो नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दिल उपजिया संग ही, सो पी संग न होया रहाओ, माग पिता सुध बंद जान हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्यवहार है जा को तुम जानो, नान खर गुण।

अवसर बीत्यो जात है, कयो मान लय मेरो अरहाव, संपत रहतन राश्यों, आतनेहो लगायो, काल फाद जब गल परी,

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगए पुछ न हो गई।

करी जे को लय विकाए नानक काम ना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही मोहल्ला पहला कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना

अंजन महे निरंजन रहीय जोग जुग तिव पाईय नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है। वाजे बाजों सिंगी वाज तौ निरभौ पल पाई है अंजन महे निरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई।

तू आपे सर्व समाना रहाओ, मन तारा जी चित तुला, तेरी सेव सराब कमावा, घट ही पीतर सो सो तोली, तेन विध चित रखावा, आपे कंडा तोल तरा जी, आपे तोलनहारा, आपे देख आपे बूज, आपे है बणजारा, अंदुला नीच जात पर देसी, खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नान करहेंदा, क्यों कर मूड़ा पावे, राग सूही

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुध सिरट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगद नीचाण जन नानक कौ हर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई सांक

नित नहीं पाइये अंत न लइये मंत्र से चरणारे पावो दान ईठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक कौ गुर कृपा तारी प्रभा दे निस्तारे। सूही महला पंजवा कार तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मांगन बहुता।

साध संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करण आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तुजारी, दृढ़ नाम दान स्नान सोचारी, कहो नानक इहो तत बिचारी, राम नाम जप पार उतारी, सूही महला पंजवा, लोभ मोहे मगन अपराधी, करण हार की सेवना।

जाए, सर्व निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सूही महला पंजवा, प्राते काल घर नाम उचारी, ईत यूत की ओर सवारी, सदा

आग प्राप्त होई अरहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोनी दूता लाई प्रेम शोगा करत कसाई निर्दय जंत तिरदया न पाई अनक जन्म बीतियन परमाई तरवास न देवे दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष न दीजे किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरण नानक गद पाई अराग सूही

सेवक कौ पौ किशनाही, जाम नहीं आवे नेरे अरहाओ, जो तेरे रंग रते स्वामी, इनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मेटे कोई, सदगुर का दिलासा, नाम त्यायन सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्ट ले सद है, ज्ञान त्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कल राखी मेरी, सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया, रखो रख नगारे, जित तू लावे, ते तम लागे, क्या ए जंत विचारे, मेरे राम जी तू प्रवे अंतर जामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी, अरहाव आठ पैर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पोतरी है, आप त्या होइए सब रेणा, जीवतियां इं मरिए, सफल जन्म जिसका जग पीतर, साध संग नव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, ये दया करे प्रवे आपे, दीन दयाल किरपाल प्रस्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक साधर वाला, राग सूही अष्टपदियां, महला पहला कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

मनना पिजई आत्मैले चित कठोर सप्पै दुध पी आईए अंदर विस निकोर आप करे किसे आखिए आपे बख्शनहार गुरसबदी मैल उतरे ता सच बनया सी गार सच्चा सहो सच्चे वणजारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावई दुख ही महे पचन होमे मैला जग फिरे मरजमे वारो वार पय किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सराही सच मान दर सच्चे सत्यार गुर पूरे पूरी मत है अहेरस नाम ते आए होमे मेरा बड़ रोग है विचों ठाक रहा पुरसाला ही अपना नेव नेव लागा पाए तान मन सौंपी आगे तरी विचों आप गवाए खिंचो तान विगुचिए एक स्यों लिवलाए होमे मेरा छड तू ता सच रह सुमाए सदगुरु नु मिले से पायर सच्चे शब्द लगन सच मिले से ना विछड़े दर सत्ते दिसन से भाई से सजना जो सच्चा से वन अवगण वेकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपज सच्ची भगत करेन सच वणजै गुर शब्द स्यों लाहा नाम लैन तोयना रूपा पाप कर संचिए

मैं तुझ ऊपर बहु माणिया, जा तू अंदर ता सुखे, तू निमाणी माणिया, जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा वेखाल, एह पाई मूह दातड़ी, नित हिरदे रखा समाल, पाव जुलाई पंद तो नैनी दर्श दिखाल, श्रवणी सुनी कहानियां, जे गुर थीवै किरपाल, किती लख करोड़ प्रिये, रोम ना पूजन तेरिया, तू साही हूं साहो, हौ कह ना सका गुण तेरिया, सईया तौ असंख, मंयो हब वधानिया, एक पोरी नदर निहाल,

बिन गुर गुण ना सुमावनी बलराम जियो, गुण सार न जानी परम भुलाणी, जो बन बाद गवाया वार कार दार दर्शन नहीं जाता, तिरका सहज ना पाया सदगुर पूछ ना मार्ग।

टाउक नेरा सुन प्रमेर मैं तेरा परवस दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नस सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए नानक साजन कौ बल जाई है साच मिले कर आए कर आएड़े साजना ता तन करी सरसी राम हार मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रवि रंग रते अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विधाते तस्कर मारवसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तार गुरमत मिले प्यारे वार पाएड़ा बालड़िए आस्था मनसा पूरी राम तेरे रावे अड़ी शब्द रली रब रहया न दूरी राम प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यो ते दी वड्याई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़िए माड़िए त्यो लोवा सिरता जा राम हाँ विष्णु पई देह गुणा अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानों

वड़भागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया, सहजे अंध हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो, काट कटे सबना विच एको, एको राम पतारो राम, गुर सेवन सदगुर दाता, हर हर नाम सुमाया राम, हर तूड़ देव हो मैं पूरे गुर की, हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गवाए, निर कर पाया वासा विवेक बुद्धि सुख रहन विखाणी, गुरमत नाम परगासा, हर हर अंध पया दिन राती, नानक हर मीठ लगाए, गुर सेवन सदगुर दाता, हर हर नाम सुमाए, राग सूगी महला चौथा, शंत कर पहला एक ओंकार, सदगुर प्रसाद सदगुर पुरख मिलाए, अवगुण विकणा गुण अवाबल राम जियो, हर घर नाम तिहाए, गुरबाणी नित नित चवा बलराम जियो, गुरबाणी सद मीठी लागी, पाप विकार गवाया, होमे रोग गया पौ पागा, सहजे सहज मिलाया, काया सेज गुर शब्द सुखाली, ज्ञान तत् कर भोगो, अन्न सुगमाने नित रलिया, नानक तुर संजोगो, सत

जाई मन मजी वधाई। जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर।

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगस अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया साथन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे घर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सारागी साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रह गए रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रवंत्र जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह सुमाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो

अंतरचितराई थाए न पाई, बिरता जन्म गवाया, जम मग दुख पावे चोटा खावे, अंत गया पछताया, बिन नावे को बेली नाही, पुत कुटम सुध पा।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभु को बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरवड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलबिख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम हर धूड़ी नाइए प्रभु ते आई है

प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन यो मन निर्मल होवे कटिए काल की फासी राम। कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सो ज्ञाना। हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज त्याना। काल मल दुख दारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभु कृपा कीजे हर गुण सुनिए अबनासी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावे चरण चले प्रभ मार ग्राम। पाव सागर नाभ हर सेवा जो चढ़े तेस तार ग्राम। भवजल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे। महा विकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। मन बांझत फल पाए।

बैसत खलिया गुण निदान सुख सागर स्वामी जल तल मही जल सोई जन नानक प्रभ की सरणाई तिस बिन अवर न कोई मेरा कर बनिया बन ताल बनिया प्रभ परसे हर राया राम मेरा मन सोया मीत साजन सरसे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाईया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजियां वाधाइया करी नदर स्वामी सुखे गामी हलत पलत सवारिया बिनवंत नानक नित नाम जपिए।

सच रते से निर्मले होमे तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा, सूविगे सूहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए। ज्यो टेके ना बिरख की छाओ, गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सगत सिवे कर आई मन वसया हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुर अपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा, सूहा रंग विकार है तंतन पाया जाए। इस लेंदे बिल मना हो वई रंड बैठी दूजे पाए, मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए। शब्द सच्चे रंग लाल कर पाए पाए सीगार बनाए। नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आप उपायन आप कीमत पाई, सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है

अंतर आत्मे जो मिले मिलिया कई गे सोए पौड़ी हर घर नाम सलाई है सदकार कमावे दूजी कारे लग्या फिर जूनी पावे नाम रत्या नाम पाईए नामे गुण गावे गुर के शब्द सलाई है हर नाम समावे सदगुर सेवा सफल है सेवे फल पावे श्लोक महला दूज किस ही कोई कोए मन निमाणी एक तू क्यों ना मरीजे रोए जा लग चेतन आव ही महला दूज जा सुगता सौरावियो दुख पी समालियोए नानक कैसे आणिए क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हों क्या सारा ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लय मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सुखाई जो तेरी शरणागति तिन लय छिड़ाई नानक वे प्रभाव है तेस तिल ना तुमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सबना भगतां की कबीर के एक ओंकार सदगुर प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना राम को नाम न कबहू लीना राम ना जप हो कमर मत लागे मर जैबे कहो क्या करो अपागे रखाओ दोसु करके कुटुंब जीवाया मरती बार एक सर दुख पाया।

करना जो नटुआ तंत वजाए तंती क्यों वाजे जंत जना जप मन आराम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया हर हिरदे हर बसना रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जने अपना जो प्रहलाद हरनास ग्रस्यो हर रख्यो हर सरना कामन कमन की गत मित कहिए हर की गे पतत पवन्ना ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे हार उतरे ओ परे ओ सरना प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन हम पापी राख पपना हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दासन्ना बलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा कर कृपा रख लेव।

बात होवे नहीं। अपना पला सब कोई बांछे, सो करे जे मेरे चितना चितैनी, मन की मत त्यागो हरजन, एहा पात कठैनी, आन दिन हर हर नाम त्यावो, गुर सतगुर की मत लैनी, मत सुमत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जनतैनी।

13 बोलो पैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भरपुर रहया जल थले राम नाम नित गाइए घर दुख बसारनो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसारन हारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा वित्यासा हुए निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे ते स्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अवनासी तोहे कर कृपा मुई मार्ग पाभो साध संगत के अंचल लाभो क्यों तरिये बिखिया संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पामन चुल्हारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोगत रह निरारा शेर ऊपर आद गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा।

निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर तस्मै लाल, गुर खोलिया पड़दा देख पई निहाल, जिन त्याकै तस आया साध, ज्यों गूंगा मन में बिस्मात, आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया, बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे।

मोहे अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मन तन आधार, विस्तृत नाम होवत तन सार। प्रभ चित आए पूर्ण।

सतगुर प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर सियाणपां बिरतियां प्यारे, रखन को तुम एक रहाओ। सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, तो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनु होए दयाला। सबल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला परपूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेसर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिने अपना प्रभ जाता,

आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जूता, नाग के प्रभ सदगी मुक्ता। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही जरना। अरगाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आप पे अवगत आप संगरचना। कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल मोहल्ला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुसो करत जन्म।

तान मन तान अर्पो सभ्य अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रामंगन, तुम पेखत सोभा मेरे आंगन रखाओ, आनक जुत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मने उधारो, मत बु सुरत नहीं चतराई।

साध संग सब दुख मिटाया। रब रहया प्रसम में आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे। रखाओ तिखा भूख बो तप्त व्यापया, शीतल पए हर हर जस जापया। कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ताना हर गुण गाया। देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बलाबल मोहला पंजवा, गुरपूरा वडभागी पाइये। मिल साधु हर नाम ते आइये, पार ब्रह्म प्रो तेरी सरना। केल बिर काटे पज गुर के चरना। रखाओ आवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार। सिमरत सास्त वेद विचारे,

जो जो निंद करे इन ग्रहण की इस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई जा को शब्द अखंड अपार।

ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजे जो बालू कर बार बिनसत बार ना लागई जो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सद देख बीचार सिद्ध साधक गिर ही जोगी ताज गए कारबार रहाओ। जैसा सुबना रैन का तैसा संसार दृट मान सा बिनसी है क्या लगे ग्वार। कहां सो पाई मीत है देख नैन पसार एक चाल एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेवया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राह पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वड्याईया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जीव दाल होए तो भगती लागो। लपट रहो मन बासना गुर मिल ए त्याग हो रगाओ करो बेनती अत कनी यो जीव हो मागो। अर्थ आनसा वारिया प्रे निमख सुहागो पंच संग गुरते छुटे दोह अर रागो हृदय प्रगास प्रगट पया निसबासर जागो। सारण सुहागने आया जिस मस्तक भागो कहो नानक तिन पाया मन तन सीत लागो। बिलावल मुहला पंजवा लाल रंग तिसको लगा जिस केवड भागा मैला कदे ना होवई न लागे दागा। पर पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाए सहज सुमाना पीतरे छोड़या न जाए। रघाओ जरा मरा न व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृता घान्या गुर अमर कराया। सो जाने जन चाखया हर नाम अमोला कीमत कई ना जाइए क्या कह मुख बोला। सबल दर्स तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी पाव तूर तेरी दास की नानक कुरबाणी। बिलावल मुहला पंजवा राखो या

लोड़े सो करे कुछ बिन कछ नाहे प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छड़ जाहे तुमरी कृपा ते छूटिए बिन से अहमेव सर्व कला समर्थ प्राप पूरे गुरदेव रहाओ खोजत खोजत खोजया नामे बिन कूर जीवन सुख सब साध संग ब्राह्मण सापूर जित जित लाभो तित तित लगे स्यानप सब जाली जत कत तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली तब के तुम ते मांगना वडभागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुन गाए बिलावल मोहल्ला पंजवां साध संगत कहे बा

अंध कुब मैं गलत थे ताडे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेड़त होवत सुखी जी दान देन रखाओ पारा पूर्वला लिखया मिलया अब आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए भय बिरसे त्यो लोग के पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलावल मुहला पंजवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ सराना करने हार ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रचित आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रखाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन में थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापे पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुबने का सुबना पया संग चलिया कमाया करण कान समरथ प्रभ तेरी शरण आई हर दिन सरायण नानक जपे साध सदबल जाई बलावल मुहला पंजवा जल टोवो ए शीश कर पग पखलाओ बार जाओ लख बेरिया दर्श पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रवते पावो देव सूनी साधके बीजन ठो लावो रगाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पी लावो वार समय सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझाओ जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावो उठत बैठत जपो नाम क्यों कर्म कमावो नानक की प्रा बेनती हर शरण समाओ बिलावल मुहला पंजवा इहो सागर सोई तरह जो हर गुण गाय साध संगत कै संग वसै वडभागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जने आखी प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी रखाओ आगन सागर ते काढ़या प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पए सखाई जन्म मरण दुख काटया तो का थान पाया काटी सिलक प्रम हो की अपने प्रभ पाया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल मुहला पंजवा बंधन काटे आप प्रभ हुआ कृपाल दीन दयाल प्रपार ब्रह्म।

रोग रगाओ औगद हर का नाम है जित रोग ना व्यापे साध संग मन तन हित फिर दुख ना जाप हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल महला पंजवां पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसे परम भ्रांत गुरपुरा जिसे फिटिया ताके सुख परवेश।

जी जंत सो प्रसन्न भए देख प्रताप करज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चत निवत रहे गुर शब्द अखूट।

अपनाया, सेमर सेमर मन तन सुखी, नानक निरपया, बिलावल मुहला पंजवा, कर तरमस्तक थापया, नाम दी नूदान, सबल सेवा पार ब्रह्म की, ताकि नहीं हान, आपे ही प्रवराखता, भगतन की आन, जो जो चितवे साध जान, जो लेता मान रखाओ, शरण परे चरणारविंद, जन प्रभु के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले, ज्योति ज्योत समान, बलावल मुहल्ला पंजवा, चरण कमल का आसरा, दीनू प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे, ताका सद प्रताप, राखनहार अपार प्रभ, ताकी निर्मल सेव, राम राज, रामदास पुर, इन्ने गुरदेव रखाओ, सदा सदा घर त्याई है, किस बिघन न लाग, नानक नाम सलाई है, पय सुमन पग, बिलावल मुहला पंजवा, मन तन प्रभ आराधी है, मिल साध समग, उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम पग, राम नाम जो जन जपै, आन दिन सद जागै, तंत मंत नै जो होई, तित चाख न लागै रहाओ, काम क्रोध मद मान मोह, बिनसे अनरागै, आनंद मंगल रस राम रंग।

रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बसेन अपनी कल तारी मन बांझ तो फल दितेन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दो पदे कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन श्रवनी ए ना सुनाए साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेव सदा करो किरताए अपय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अघ अघ गुण राती नयन दर्श रंग लाए।

कहो नानक ऊचो ऊचा बलावल महला पंजवा बिन हर कामना आवत हे जा सो राच माज तुम लागे मोह मोहनी मोहावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिने मह जावत हे उर जरे इंद्री रस प्रेरे हो बिखे ठगोरी कावत हे तिरण को मंदर साज सवार हो पावक तले जरावत हे ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मोड पर ठाडे केस गए फेरावत हे दिटन आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत हे जाल पसार चोग बिस्तारी पंखी जूफा हावत हे कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत हे बिलावल महला पंजवा हार हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान तंबोली रखाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जोवड़ पागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मोली कहो नानक प्रेरवी सुहागन आतनी की मेरी बनी खटोली।

रहो संपूर्ण शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध न अहंकार संते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते यो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोझ पई। बिलावल मोहल्ला पंजवां क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साके एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिए किश कथन ना जाई जय जय देखा तय रया समाई रखाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए तय मेरे प्रभ तू है सगाई शरण परे उहर चरण गए प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल मोहल्ला पंजवां आगम रूप अवनाशी करता पातत पवित एक निमख जपाइए आचरज सुनियो प्रात भेट ले संत चरण चरण मन लाइये कित विधिये कित संजम पाइये कौ सुरजन के ज्योति त्याइये रखाओ जो मानुख मानुख की सेवा ओ तिसकी लई लई फुन जाइये नानक सरन सरन सुख सागर मुए टेक तेरो एक नाइये। बिलावल मोहल्ला पंजवां संत सरन संत टहल करी तंद बंद आर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रखाओ सुख सहज आर कनो आनंदा गुर ते पायो नाम हरी ऐसो हरस बरन सको गुर पूरे मेरी उल्ट तरी पेख्यो मून।

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इहो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवां सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काट कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिहारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव

आयो आप अपने सेवक की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत्र।

मूला नसो प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को आकत कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवां हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रबो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवां राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान तनंतर सर्व नरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अभमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महानुत अजान अज्ञानी रखे तार दए, कहो नानक गुरपुरा फिट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां, जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रहाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मोयो अंध तुनी, उपजो चाओ मिलन प्रीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि, अंधले टेक निर थन थन पायो प्रभ नानक अनक गुणी। राग बिलावल महला पंजवां, कर तेरवां पड़ताल।

रूप त्याभो नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायोरी। मोहन रूप दिखावे आ मोहि नींद सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज समानी मीठी तरह कहानी। मोहन लालन पायोरी अरहाओ दूजा बिलावन महला पंजवा मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे राचो नाथ की सहाई संतना आव चरण गहे रहाओ आहे मन अवरना भावे चरणावे चरणावे उलझ्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे एके हर लाहे अन ते टूटिए रिखते छूटिए मान हरस कूटिए संग साधु उल्टिए अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे।

लेहो लड़लाए, नानका नाम ते आए। दीनानाथ दयाल मेरे स्वामी, दीनानाथ दयाल जाचो संतरवाल रखाओ। संसार विखिया कूप, ताम अज्ञान मोहत कूप, गय पूजा प्रभ जी लेहो। हर नाम अपना देहो, प्रभ तुझ बिना नहीं चाहो। नानका बल बल जाओ, लोभ मोह बादी देह, बिन भजन होवत खेहे। जमदूत महापयान, चित गुप्त कर्म है जान, देन रैन साख सुनाए। नानका हर शरणाए, पय पंजना मुरार, कर दया पतत उधार। मेरे दोख गने ना जाहे, हर बिना कते समाहे। गय ओट चितवी नाथ, नानका दे रख हाथ। हर गुण दे गोपाल, सर्व कड़ प्रतपाल। मन प्री दर्शन प्यास, गोविंद पूर्ण आस। एक निमख रहन ना जाए, वड़भाग नानक पाए। प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर। जो मीन जल सुवेत, आल कमल पिन ना पेत। जो चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास। जो तरन परत परान, जो लोभिये तन दान। जो दूध जले संजोग, जो मां खुदिया रस भोग। जो माद पूते हेत, हर सिमर नानक नेत। ज्यो दीप पतन पतंग, ज्यो चोर हिरत निसंग। मैगल कामे बंद, ज्यो ग्रस्त बखई तंद। ज्यो जुआर बिसन ना जाए, हर नानक इहो मन लाए। कुरंक ना देने हो, चातरक चाहत में हो। जन जीवना सत्संग, गोविंद भजना रंग। रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान। गुण गाए सुन लिख दे, तो सर्व फल हर ले। उल समूह करत उधार, संसार उतर सपार। हर चरण भोजित ताहे, मिल साध संग जस गाहे। हर पैज रखे मुरार, हर नानक शरण दो।

फल जाए, रस खाए साध गुआए, कूड़े लालच लपटे लपटाए, टूटे गुरमुख साज कमाए, दुआ दस मुंदरा मन अवधूता, ऐन से जाके कवे न सूता, जागत जाग रहे लिवलाए, गुर परचित काल न खाए, अतीत पै मारे बैराई, परणत नानक तय लिवलाई, दुआसी दया दान कर जाने, बार जा तो पीतर आने, बरती बरत रहे ने काम, अजपा जाप जपे मुख नाम, तीन पौन में एको जाने, साव सु संजम साज बिछाणे, तेरस तरवर समुंद किनारे, अमृत मूल शिखर लिवतारे, डाडर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पद कोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने, चौदस चौथे थावे लय पावे, रायस तामस सदकाल समावे, ससियर कह कर सूर समावे, जोग जुत की कीमत पावे, चौदस पवन पाताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए, अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बूझो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन जोत त्यो लोई, कर कर वेखे करता सोई, गुरते दिसे तो तिसगी माहे, मनमुख पूले आवे जाहे, तार दर थाप फिर तान सुहावे, आप छाणे जा सतगुर पावे, जय आसा ते बिनस बनासा, फूटे खपर दुबदा मनसा।

कैद कबीर सोरे संतो मिल गए साग पानी रे। बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो, हर गुण कथत सुनत बौरानो। मेरे बाबा मैं बौरा, सब खलक सयानी मैं बौरा। मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा, रहाओ आपना बौरा राम की बौरा। सदगुरु जार गयो परम मोरा, मैं बिगड़े अपनी मत खोई। मेरे परम फूलो मत कोई, सो बौरा जो आपना पछाने। आप पछाने ता एक कह जाने, अभे ना माता तो कहो ना माता। कहे कबीर आरामे रंग राता, बिलावल ग्रेव तज बन खण जाइए। क्यों खाइए कंदा अजो विकार ना छोड़ई। पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो, भजल निध पारी।

मेरे माधवा तू सर्व व्यापी, तुम समसर नहीं दयाल, मोहे समसर पापी बलावल, नेत उट कोरी गागर आने, लीप्त जियो गयो, ताना बाना कछु ना सूजे, हार हार रस लपटेओ, हमारे कुल कौने राम कहो। जब की माला लई निपुते, तब ते सुगना पयो रखाओ, सुनो जिठानी सुनो दिरानी, अचरज एक पयो, सात सूत इन मुंडगे खोए, यो मुंडिया क्यो नाम होयो, सर्व सुखा का एक कर स्वामी, तो गुर राम दयो, संत प्रहलाद की पैज न राखी, हर नाश नख बिदरेओ, करके देव किदर की छोडी, गुर को शब्द लयो, कहेत कबीर सगल पाप खंडन, संत है लय उधरेओ बिलावल, को हर समान नहीं राजा, ए पूबत सब दिस चार के, झूठे करत दिवाजा रखाओ, तेरो जन होए सोए कद डोले, तीन पवन पर शाजा, हाथ पसार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा, चेत

राख ले हो हम ते बिगरी, सील तर्म जा भगत न कीनी, हों अभमान टेढ़ पगरी रहाओ। आमर जान संची एक आया, ए मिथ्या काची गगरी, जिने नवाज साझम किए, इसे बसार अवर लगरी, तंदक तोए साध नहीं कई हो, तन परे तुमरी।

तेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। केश किसी के हाथ नाही मेरे स्वामी ऐसी मेरे सदगुर बूझ बुझाई। जननान की आस तू जान है हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गौंड महल्ला चौथा ऐस हर सेविये नित्याइये जो खिल में केलविक सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस कीजे तहर नेफल सब काल गवासा। मेरे मान हर सेवे सुखदाता स्वामी जित सेवे सा पुख लखासा। मेरे मान हर ऊपर कीजे परवासा।

लूट लेहे सागत पद खोवे साध जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत बुझ खेल कर जगत विहाय तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिये छिड़ाए जिसके से तिन रखे हटाए।

पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिर सतगुर सब काज सवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गुंड महला पंजवा असागर भोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंथ मां विचार पंच दूत मंथ तौ शरण आई पूर्ण नाथ।

कसना सिमरत पाप बलायन अरहाव नारायण समय निवास नारायण कड़कड़ परगास नारायण कहते नरक न जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे आधार नारायण भोयत संसार नारायण कहत जम पाग पलायन नारायण दंत पाने डायन नारायण

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोहे

दो दुष्ट त्रिपोह तनाहे, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरण आए, जो जो शरण पया हर राय, तो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन में रुलता खाकू नार, है पी साचा होमनहार,

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल तान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

अहंकारी जन पर माने निंदक वेकारी गुर कै सिख सदगुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरतै घर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अब माने की जड़ सर पर जाए नी तरिया सदगुर तर तेरी करके पारा खो जन केरी कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा के सिमरन पैज सवारी राग गोंड बाणी भगता की कबीर जी तार पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद संत मिले के सुनिए कही है मिले असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कही है जैसे राम नाम रब रही है रखाओ संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले।

ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रखाओ। जैसे गाय का बाछा छूटला थान चोखता माखन कूटला, नाम दियो नारायण पाया पुर पीड़ित अलख लखाया। जैसे बिखे हिद परनारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी, जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा।

कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे ध्याना अभी कभी किशु न जाना तेरा एको ना पछाना ना जाना हरे मेरी कमन गते हां मूर्ख अज्ञान शरण प्रा तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रखाओ तहू जीड़ा उब चढ़त है कभू जाए पयाले लोभी जीड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लखाए मंडल में

खत्री ब्राह्मण सूद के वायस निरतन पाइया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोय नानक शोभा रंगत होय राम करी महला पहला तुदनु निवण मनन तेरा नाव साज पेट बैसन कौताव ससन तो होय अरदास ता सुन शब्द बखाले पास नानक बिरता कोई न होय ऐसी दरगे साचा सोए रखाओ प्राप्त पोता करम पसाओ तू देव है मंगत जन चाओ पांडे पाओ पवित आए तुरते छोडी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे तरै गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तिकार कहे मंगत जा मंगत मान ना पाया सह किया गल्ला दर किया बातां तय ता कहन कहाया राम कली मोहला पहला सागर मैं बूंद बूंद मैं सागर कवन बुझे बिद जाने ओत को चलते आप कर चीने आपे तत् पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ दिन मैं रहन रहन मैं दिनियर उसन सीध बिद सोई ताकि गत मित अवर ना जाने गुर बिन समझ न होई पुरख मैं नार नार मैं पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी तुन मैं ध्यान ध्यान मैं जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मैं जोत जोत मैं मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द ले बिलाई।

तुम मैं मान कलाला, तुम देव ते संक न मन हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूर है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहा, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर करताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मद बांसुरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा, राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सा सीगारी रघाओ, अखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पन्म चूला करत अकेला, जल ते उपत हुआ, पंच तत कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दु जरे चिरागा, चौ कुंड पीतर राखे, दस पातो पन संगीता, एक पीतर साते, पिन पिन हुए पार दिखावे, सभो निरारी पाखे, तार कर नृत हो दिन राती, हर कड़वा जे तूरा, एक नचाव है, एक पवाव है, एक आए जाए हुए तूरा, कहो नानक

वे परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा ताई मांगे टूका तृप्त ना पावे नाद छोड़ जाचे लाज न आवे क्याल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुर गुर कीते बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसन हुआ नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंता नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जपया नाथ दिन रहनाई हुन पाया गुर गोसाई रहाओ दूजा राम कली महला पनवा करन करा मनसोई आना दिसे कोई ठाकुर मेरा सूड सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे घर समीठा गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम पीत अमर पय ने काम तन मन शीतल अग्नि निवारी अंध रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब कुछ तेरा सब बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हौ तेरा तू मैं मन मूठा राम कली महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप निवारी जिस गुर कहो सद बलिहारी ताज मारे पूरे सदगुर बाजे अनघ तूरे सदगुर रहाओ महिमा जाकी गैर गंभीर होए निहार देज तीर जाके बंधन का टेराए सो नर भौर न जो नी पाए जाके अंतर पलट्यो आप ताको नाही दुख संताप ला रतन से पाले परया सगल कुटम ओ जन ले तरया नाह।

जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओ आके सरंजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा

अंत की बार ऊठ सिधारे, ना बिनासव चूड़ परानी, गोविंद भजन बिन अवर संगराते, तेसा माया मूठ परानी रहाओ। तीर्थ नाये न उतर समायल, कर्म धर्म सब हो में फैल, लोक बिचारे गत नहीं होए, ना बिहूने चल सहे रोए, बिन हर नाम ना टूटस पटल, सो दे शास्त्र सिमरत सगल, सो नाम जपे आप जपाए, सगल फला से सुख समाए, रखन हारे रख हो आप, सगल सुखा प्रतुम रहे हाथ।

तो ही सुख जाना, मन असमझ सा संगतियाना, डोलन ते चूका ठहराया, सत माहे ले सत समाया, दू गया सब रोग गया, प्रभु की आज्ञा मन में मानी, मां पुरख का संग पया रहाओ। सगल पवित्र सर्व निर्मला, जो वरताए सोई पला, जय राखे सोई मुक्त थान, जो जपाए सोई नाम, अड़सठ तीर्थ जय साध भगत धर है, तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है, सर्व आनंद जब दर्शन पाइए, राम गुणा नित नित घर गाएगे।

रिद बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निम्ख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तोर वीर तीर जमद पूरा फैज समाध तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद आरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उत्तर।

पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा हो निर्मल जियो, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सोहर भजन साध कै संग, मंतन रापे हर कै रंग, तोड़ सियाण प्रभो चितराई, मन बिर हर नावे जाए ना काई, दया तारी गोविंद गुसाई, हर हर नानक टेक टकाई, राम कली महला पंजवा, संत कै संग राम रंकेल, आगे जमस्यो हुए ना मेल, अंगबुद का पया विनाश, दुर्मत होई सगली नास, राम नाम गुण

संग पवजल तरिगे प्रभ कई रंग देही तोय न उतरै मैल होमे व्यापे दुबदा फैल हर हर औखद जो जन खाए ताका रोग तगल मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कहू न बिसर।

सागर तरियो बाशर खोज खेद न पायो नए पुनरोज सिंध समायो कट के माहे करण हार कहो किस अज जनाहे जो छूटो तो जाए पयाल जो कढ़ो तो नजर निहाल पाप पुन हमारे बस नाहे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली मोहल्ला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे बेअपिया तोहे उदम करे गाडर ज्यो शेल अचिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साज तना रहाओ ऊने काज न होत पूरे काम क्रोध मद सदगी चूरे करे विकार जीरे के ताई गाफल संगनत हुआ जाई तरत तो अनक छल जाने कौडी कौडी को खाग सिर छाने जिन दिया तसे न चेते मूल मिथ्या लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म जब पए दयाल जो मन हुआ सादरवाल हस्त कमल लड़ली नू लाए नानक साचे सास समाए राम कली मोहल्ला पंजवा राजा राम की शरणाए निरपो पए गोविंद गुण गाव साध संग दुख जाए रखाओ जाके राम बसे मन माही तुझन दुत्र पेखत नाही अगले काशवारे अपने हर हर नाम रसनित जपने जिसके मस्तक हाल गुर तरे तो दास अंदेशा काहे करे जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुर ऊपर कुर्बान गुर परमेश्वर पेट निहाल तो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिक्र पा करे साध संग सो पव जल तरे अमृत पीवो साध प्यारे मोख उजल साते दरबारे अंध करो ताज सगल विकार नानक हर जप उतर हो पार राम कली मोहल्ला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागे माटी को जल दहदिस जागे ऊपर चरण तले आकाश कड़मे सिंध कियो परगास ऐसा समर्थ हर जीव आप निमकन बिसरे जी भगतन कह आठ पैर मनता को जाप रहाओ प्रथमे माखन पाछे दूध मैलू कीनू साबन सूद पय ते निरपो डरता फिरे हुंदी कौ अणहुंदी हिरे देही गुप्त बदेही दीसे सगले साज कर जग दीसे ठगन हार अन ठगदा ठगे बिन वखर फेर फिर उठ लागे संसभा बिन करो बखियान सिमरत शास्त्र वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोय नानक ताकी परम गद होय राम कली मोहल्ला पंजवा जो तुझ पावे सो थिया सदा सदा हर की शरणाई प्रभु नाही आन बिया रहाओ पुत कलतर लक्ष्मी दिसे इन में किशु न संग लिया बिखे ठकौरी खाए पुलाना माया मंदिर त्याग गया निंदा कर कर बहुत विगूता गर्भ जो में कृत पया पूर्व कमाने छोड़े नाही जम दूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा तिस न बूझे बहुत हया असाध रोग उपजिया संदूखन दे बिनासी महा खया जिन्हें निवाजे तिन ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर किरपा पार ब्रह्मया राम कली मोहल्ला पंजवा ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई जाका सिमरन तिरथा ना जाई रहाओ दर्शन पेहत होए निहाल जाकी तूर काटे जमजाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार्ज सवारे सगले तन के जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ पतत उदाहरण कृपा निधान सदा सदा जयगे कुर्बान निर्मल मत दे जिस दान तजे विकार बिन से अपमान एक तिहाई के साध के संग पा बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास कट कट रब रया गुणतास दर्श दे तारो प्रव्यास नित नानक चितवे सच अरदास।

जन्म मर आए जमदर बाधो मरे बेकार ना हृदय नाम ना शब्द अचार एक पांधे पंडित मिस्र कहावे दुखदा राते महल ना पावे जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोड़ मदे को जन अपार एक बुरा भला सच एक है बूझ ज्ञानी सदगुर की टेक गुरमुख विरली।

जेवा सूची साचा बोल हर दर साचा नहीं रोल। एक बन में बैसे डुगर स्थान नाम सार पते अभमान ना बिना क्या ज्ञान ध्यान गुरमुख पावे दरगे मान हट अंकार करे नहीं पावे। पाठ पढ़े ले लोग सुनावे तीर्थ परम सो व्याध न जावे ना बिना कैसे सुख पावे। जतन करे बिंद कवे ना रखाई मनवा डोले नरके पाई जंपर बादो ले सजाई बिनावे जियो जल बल जाई। सिद्ध साधक केते मुन देवा हट निग्रह ना तृप्तावे पेवा। शब्द विचार गह गुर सेवा मन तन निर्मल अभमान अपेवा। कर्म मिले पावे सच नाओ तुम शरणागत रहो सुपाओ तुम ते उपजो भगति पाओ। जप जप

जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तान तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सुहेत वधाए, की नाम सार है परम गया, रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, ओन दान इसनान ना संजम, सास दिन बाद जया, लाल तिलागे नाम सारे, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम न सर्व दया, बिन गुर शब्द न गत पद पाव है, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करे टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हम में रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आवद देखे, सागत मान अब महान भया, जिसका यो तान तान सो पर लेवे, अंतर से साधु पया, अंत काल के साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असरार पया, देव कुटाम्ब मायाग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जा आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया, जो कुछ करना सो कर रहया, बख्शन हारे बख्श लया, जिन तो चाखिया राम रसायन, तिनकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक

एक मैं सर्व सर्व मैं एका ए सब गुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा तो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासया तिर पवन जो दिखाई सच्चे तख्त सच महली बैठे निरपो ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी काड़ काड़ किंगरी वाई नानक शरण प्रभु की छूटे सतगुर सच सुखाई राम कली महला पहला औ हठ हस मड़ी करशाया तारण गगन कल तारी गुरम केती शब्द उधारी संतो रखाओ ममता मार ओ में सुख तिर पवन जो तुम्हारी मनसा मार मने मैं राखे सतगुर शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाहद वाजे फड़कड़ जो तुम्हारी पर पांच बेण तई मन राखिया ब्रह्म अग्न परजारी पांच तत् मिल अर्ज दीव निर्मल जो त्यपारी रस लौके इव तन किंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी मैं आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इव मन राजा पांच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कहे बपरे जीव तमुआ मन मारी ब्रह्मा विष्ण महेश एक मूर्त आपे करता कारी ताया सो तरे पवसागर आत्म तत् विचारी गुर सेवा ते सदा सो पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता होमे तृष्णा मारी त्रै गुण मेटे चौथे वर्त एहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने हृदय एक मोरारी मनवा अस्थिर शब्द राता एहा करणी सारी वेद बादरा पाखंड औदू गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जो कुमावे औदू जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मारे औदू जो जूत विचारी माया मोह भवज लख अवधु सब तरह कुलतारी सब सूरज उचारे अवधु बाणी भगत विचारी यो मन माया मोहया अवधु निरसे शब्द विचारी आपे भगसे मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी राम कली महला तीजा अष्टपदिया एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सरमे दिया मुंदरा कन्नी पाए जोगी खिंसा कर तू दया आमन जान विपूत लाए जोगी ता तीन पवन जिन लाया ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजे हर सिमर है लिवलाए रहाओ सत संतोख पद कर चोली जोगी अमृत ना पुगत पाई क्या कागर डंडा जोगी सिंगी सुरत बजाई मान दृढ़ कर आसन बैल जोगी।

सगल जोन मैं तू सिर तरिया, अब तू सीज पावे नी सीजे, कार्ज सबरे मन प्रवते आई जे, ईगा ऊगा एक ओही, जद का देखिए तत तत ओही, ते सेवत मन आस करे, जिस विसरे एक निमक न सरे, हम अपराधी निर्गुनियारे, ना के सेवा ना करुमारे, गुर बोहे थवड़ पागी मिलया, नानक दास संग पाथर तरिया, राम कली मोहल्ला पंजवां, काउ बिहावे रंग रस रूप, काउ बिहावे माए बापूत, काउ बिहावे राय मिलक वापारा, संत बिहावे हर नाम आधारा, रचना साज बनी सबका एक तनी रहाओ, काउ बिहावे बेद अरबात, काउ बिहावे रसना सा

राख लिगे भगत जन अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरे एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन प्रा लगा मीठा पाणा, तब इश पुन्नी आस पूरी मिले सदगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली मोहल्ला पंजवा शांत श्लोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नानक प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमर गए जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहे एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीशरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी सिपावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक, हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो, प्रतपाल अचुत पुरख एको तिसे सो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तसका तन जोबन तन माल जियो, ससदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो। श्लोक, तदन उतरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नांग पगड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक, धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ शंत, सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध भयावड़ पागी हो ग्रे पलटे प्रव आए जियो, ग्रे लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए।

काटन पय हरण तुसा गर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याए शांत जस गावोड़ पागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुत्ती महा मूर्त कड़ी गुण उचरित सोभावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिनी एक मन त्याया सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रापाया उन दान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो श्लोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद पावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत तू केते हरियाथिया नानक जप भगवंत संत रुत सरस बसंत माचेत वैसा सुख मह जियो हर जियो नहो मिलया मौलिया मंतन सह जियो कर नहो नेचल अंध सखिये चरण कमल पर भोलिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड़पाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो श्लोक सा संत मिन प्रमोई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाने से मिलिया विछोड़े पिया नानक प्रसरणागति जाकावड़ प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़े काम जियो प्रेम शो दुहागणी दृष्ट न करी राम जियो न दृष्ट आवे मर्त हावे महागर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पय पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नान कोट तेरी राग पूर्ण काम जियो श्लोक सदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन न जाए मन तन अंतर राव रहे नानक सह सुपाए कर गैली नी साजने जन्म जन्म के मीत चरणे दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो तन उन उठ जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रापू रहया सर्वठाई हर नाम नवनिध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी और समूहा सब तरे प्रे रंग जागे नय छिद्र लागे किरपाल साधक सिंध जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो श्लोक आस प्यासी मैं फिरो ता पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रा मेलन हार बिन मिलबे सांत न उपजे तिल पल रहन न जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सरद अडंबरो असू कतके घर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत का मिल गए गुण तस जियो बिन कंत प्यारे नह सूग सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती साध बिन जैसे तना ईत पुत दैदस अलोकन मन मिलन की प्या प्यास जियो बिन वंत नानक तार कृपा मिल हो प्रा गुण तस जियो श्लोक जलम जी शीतल पय मंतन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले द्वितीया बिरसी प्रांत तद पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक प्रम पै मिट गए रमण राम पर पूर शंत रुत सिसियर शीतल हर पलटे मंगर पोहे जियो जल बुझी दस पाया मिसे माया त्रो जियो अवका पूरे मेर हजूर हर चरण सेवक सेवया हार डोर सीगार सब रस गुण गाव अलख पेवया पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साके जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आ मेली तैरा प्रेम शो जियो श्लोक हर तन पाया सुहागणी डोल तनाही चीत संत संजोगी नानका गृह पलटे प्रमीत नाल बिनोद आनंद कोट प्रे प्रीतम संग बने मन बांशत फल पाया हर नानक ना पने शंत हिम कर उत्मन पावती माघ फगन गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रे आए हर कंत जियो ग्रे लाले आए मनते आए तेज सुंदर सोईया वाण त्रेण त्रिपौन पय हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इश पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो श्लोक संत सहाई जी के फजल तारण हार तब ते ऊचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया
ते ही तरे ते सूरे से वीर नानक तिन बिहारण हर ज उतरे तीर शंत चरण बरायत सब उपरे मिटिया सगल कलेस जियो आमन जामन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर अंगरा ते सहज माते तिलना मन ते बीसरे तज आप सरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीशरे गोविंद गुण श्री रंग स्वामी आदि को आदेश जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दक्षिणी ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओंकार ब्रह्म उत्पत ओंकार किया जिन चित ओंकार सैल जुग भय ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर तेरे पमसार सुन पांडे कह लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्से सब जग सहज उपाय तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन ले मानक मोती समझे सूझे पड़ पड़ बूझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देखे साच संभाले बिन साचे जग काचा तदे धर्म तरे धर्मापुर गुणकारी मन धीरा तदे तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पए मनूरा तन तरणी तर आप अजोनी तोर बोसद पूरा करते की मित करता जाने कहे जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिग खाया गुर रस गीत बादनी पावे सुनिए गहे गंभीर गवाया गुरस कहया अमृत लया मन तन सा सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एक को एक कहे सब कोई होमे गर्भ वे आपे अंतर बार एक बिछाणे क्यों कर मैल संजापे प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो एक को सृत सबाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते को क्यों गए राखो अफरे तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लाभ लोभ मोहताज विगूते इवता फिर पछताई एक सरेवे ता गत मित पावे आमन जान रखाई एक अचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एक को पावर पवे ते लोए एक को बूझे सूझे पत होए ज्ञान जान ले समसर रहे गुरमुख एक विरला को लहे जिसनु दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊर्म तूर्म जोत उजाला तीन पण में गुर गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे ऊन बरसे निजर तारा उत्तम तब सवारन हारा इस एके का जाने पेओ आपे करता आपे देओ उगवे सूर असर संघारे ऊचो देख शब्द बीचारे ऊपर आद अंत लोए आपे करे कथे सुने सोए ओ विधाता मन तन दे ओ विधाता मान मुख सोए प्राप जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पद होए अराजन राम रवे हितकार रण में लूजे मनुआ मार रात दिन अंत रहे रंग राता तीन पौन जो चारे जाता जिन जाता सो तिस ही जेहा आत्म निर्मायल शीश देहा रे श्री राम हृदय एक पाए अंतर शब्द साथ लिवलाए रोस न कीजे अमृत।